107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है रविवार, शक संवत

1948 आषाढ़ माह 28वीं तिथि तदनुसार 19 जुलाई सन 2026 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजे हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को

संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। विदुर नीति शतकम के अनुसार यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से दिन भर जो कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे उन कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे 10:05 पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ हम आपके लिए पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में आज का टॉपिक रहेगा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने विचार इस प्रोग्राम में हमारे साथ साझे कीजिएगा।

आकाशवाणी के 90 साल होने पर एक विशेष श्रृंखला हमने शुरू की हुई है, यादों का काम। इसी कड़ी में आज ट्राइसिटी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बलजिंद्र कौर की कहानी इस प्रोग्राम में। दिन में 11 बजे ये कार्यक्रम होगा, यानी यादों का कारवां।

0: 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद कुछ पंजाबी गाने, रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर और शाम 6:10 पर। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। दोपहर 12:00, शाम 5:00, शाम 6:00, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6:35 होने को है। अगला कार्यक्रम है श्री राम चरित मानस। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री राम चरित मानस गान भाग 254।

11:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। इस प्रोग्राम में हम आपको कोई 5 फिल्में देते हैं, उन 5 फिल्मों में से आप अपनी पसंद की फिल्म चुनिए, उसमें से अपनी पसंद का गाना चुनिए और इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें अपनी पसंद बताएंगे और हम आपसे बातें करते हुए आपकी पसंद प्ले करेंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे सुनिए शाम 5:20 पर 5:30 बजे। आज आप फिल्म संगीत

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्री राम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण, कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूरिया कल्याण, इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूरिया कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह, और पूरिया कल्याण में ऋषभ जो है पूरिया की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूरिया कल्याण और पूर्वा कल्याण, ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूरिया कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूरिया कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्या काल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी, गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूरिया, पूरिया धनाश्री, श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूरिया धनाश्री पूरिया, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूरिया कल्याण जो राग है, संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के

ये अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूरी अंग से पूरिया कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आपको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज में लाल पत्थर फिल्म के गाने के साथ। नीरज हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अगला गाना हमने लिया है बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म से मुकेश ने गाया, से लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी वीर जी शाह ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में नौजवान फिल्म का गाना। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और तर्ज SD बर्मन की है।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में अर्धांगिनी फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं वसंत देसाई।
1: अरे तूने जो इधर देखा, हाय मैंने भी उधर देखा। तूने जो इधर देखा, मैंने भी उधर देखा। काहे को जल

0: ढूंढ रहा हूँ तुझे दिल दे के सजनी, तू ही बता दे जिया क्या हो गया।
1: अभी अभी तो मेरे पहलू में था वो, राम ही जाने पिया क्या हो गया।
0: ढूंढ रहा हूँ तुझे दिल दे के सजनी, तू ही बता दे जिया क्या हो गया।
1: अभी अभी तो मेरे पहलू में था वो, राम ही जाने पिया क्या हो गया।
0: शोला सा चमक गया, थोड़ा मैं बहक गया, थोड़ी तू बहक गई रे। नजर भर की हो गई नादानी, नजर भर की हो गई
2: नादानी, नजर भर की हो गई नादानी, नजर

0: रहना पड़ेगा गौरी मेरे लिए।
1: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
3: आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन,
6: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन,
7: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम, गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
8: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एन दत्ता का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है सुधा मल्होत्रा की, फिल्म का नाम भाई बहन।

और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज में 12 o'clock फिल्म के गाने के साथ, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और ओपिनियर की है तर्ज।

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है सुप्रसिद्ध गीतकार नीरज जी की पुण्यतिथि। आज हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं नीरज जी की चुनिंदा रचनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नीरज जी के ही लिखे गीत के साथ। SD बर्मन की है तर्ज, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं, और फिल्म का नाम शर्मीली।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: बाहर थी राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गाना। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं एसटी बर्मन।
4: सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

अगला गाना हमने लिया है बनारसी ठग। इस फिल्म से उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं, नीरज के बोल और धुन इकबाल कुरैशी की।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करें और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: ही है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले मुकेश की आवाजें नीरज के बोल और तर्ज शंकर जयकिशन की।
5: टिक टिक टिक टिक टिक टिक

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
4: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच

0: विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर

0: रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार CBSE की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए।

0: खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 8:15 हुए हैं। अगला प्रोग्राम त्रिवेणी।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं।

सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है, वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये चलाते अच्छी लगती हो, तो मैंने कहा आप ही चला सकते हो क्या? हम लोग भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं औरतें। मर्दों को प्रॉब्लम होती है, मर्दों को क्यों होती है? उनको

0: नर्वस होती है, अरे ये औरत ऐसी हो गई, अरे औरतें चलाने लगेंगी तो हम लोगों का क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं औरतों को। तो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, बिना उनकी बात सुने, बिना उनकी बातों पे गौर किए चलती हूँ।
1: तो सुनना न भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने ली।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हाउसफुल फिल्म के गाने के साथ। तरुण सागर, एलिसा मेंडोंसा और लॉय मेंडोंसा की आवाजें हैं। समीर के बोल और तर्ज शंकर एहसान लॉय की।

अगला गाना हमने लिया है प्यार इम्पॉसिबल, इस फिल्म से ऋषिका सावंत की आवाज अनविता दत्त ने लिखा इसे और संगीत से हमारा सलीम सुलेमान ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए लव्यापा फिल्म का शीर्षक गीत नकश अजीज और महवंती बाक्षी की आवाजें सोम के बोल और तर्ज बनाई व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने।
3: दिल है जवान तुम हो कहो।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से, अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में क्या सुपर कूल है हम इस फिल्म का गाना। कुमार के हैं बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज।

0: वृक्ष की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

यह है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए हर्षित सक्सेना और भूमि त्रिवेदी की आवाजों में सब कुशल मंगल फिल्म का गाना समीर अनजान है। गीतकार और संगीतकार है हर्षित सक्सेना।

दोस्तों, आज है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को केवल बड़े उद्योगपतियों तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों तथा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और ऋण सुविधा मुख्यतः बड़े उद्योगों एवं संपन्न लोगों को ही प्राप्त होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बहुत कम थी, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को साहूकारों पर भर रहना पड़ता था। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में बैंक शाखाओं का तीव्र विस्तार हुआ तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और गरीब वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध होने लगा। महिलाओं, विद्यार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली, तो अपने आप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाजों में राबता फिल्म का गाना सुनवा रहा हूँ। कुमार की है बोल और सोहराबुद्दीन की तर्ज़।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये चलाते अच्छी लगती हो, तो मैंने कहा आप ही चला सकते हो क्या, हम लोग भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं औरतें। मर्दों को प्रॉब्लम होती है, मर्दों को क्यों होती है, उनको जेलस होती है, अरे ये औरत ऐसी हो गई, अरे औरतें चलाने लगेंगी तो हम लोगों को क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ने देते औरतों को। तो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, बिना उनकी बात सुने बिना उनकी बातों पे गौर किए चलती हूँ।
0: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
3: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: होती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और उस्मान मीर की आवाजों में दुकान फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा थे गीतकार और संगीतकार थे श्रेयस पुराणिक। अभी आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से। आवाज है शशि और डीजे खुशी की, गगन आहूजा के बोल और शशि डीजे खुशी की तर्ज।

0: इस गाने के साथ ही आज का चितलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ प्लस

0: चंडीगढ़ सेक्टर 36 से 40 में 2 BHK फ्लैट खरीदना है तो संपर्क करें 94182-95950।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ क्लासिफाइड एड्स।
0: नौ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आज का अखबार।

0: अश्वी है
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आज का अखबार।
4: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे। शुक्र है भाई, शुक्र है ऊपर वाले का। बारिश की बूंदें ट्राई सिटी की धरती पर पड़ी, आखिरकार पड़ी। बड़ी शिद्दत से इंतजार था इनका, उमस से बेहाल घुटा घुटा सा माहौल। चलो थोड़ा खुला ही सही, राहत मिली है। और वाकई दोस्तों, ऐसे मौसम के बाद जब थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो उसकी कीमत क्या होती है, ये हर कोई बात को महसूस कर रहा है। आज सुबह सवेरे पंचकुला में, चंडीगढ़ में और मोहाली में भी बूंदाबांदी ही सही हुई तो सही। तो इसीलिए प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ऊपर वाले का शुक्र किया कि आखिरकार बारिश की बूंदें ट्राई सिटी की धरती पर पड़ी, घुटा घुटा माहौल थोड़ा खुला। वैसे आज से बारिश से भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून लौट आया है। चलिए अच्छी बात है, एक ब्रेक के बाद लौटा है। अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तीनों राज्यों के लिए अलर्ट है भारी से भारी बारिश की। तो अब ये तो हर वक्त बताएगा, लेकिन बारिश कितनी जरूरी है हमारे लिए, पानी कितना जरूरी है, ये इस माहौल ने हमें बताया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मानसून सीजन में, बारिशों के मौसम में, कैच द रेन, जल का संचय करें। जहां जहां आप बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं जरूर करें। बारिश का पानी ऐसे ही किसी मौके के लिए काम आता है। इसीलिए पानी ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद कीमती है। जब ऐसा वक्त आता है, हम ये दुआएं करते हैं कि ऐसा ना आए, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है, ऐसा माहौल होता है, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि पानी की कीमत क्या है। तो चलिए, अब मौसम विभाग का कहना है कि मानसून लौट आया है ब्रेक के बाद, और हम उसका स्वागत करते हैं। और उसके स्वागत में हम ये जरूर कहते हैं

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। और आज इस प्रोग्राम में अगर हम एक ऐसी उपलब्धि की बात ना करें तो प्रोग्राम अधूरा रहेगा। और देश के नाम ये जो उपलब्धि की है, देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की सफल उड़ान है। खास बात यह है कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया ये रॉकेट है विक्रम 1। प्रधानमंत्री ने इस उड़ान को भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक निर्णायक क्षण बताया है। मिशन आगमन नाम से इस अभियान का संचालन हैदराबाद आधारित निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। और इसके संस्थापक हैं इस कंपनी के पवन कुमार चांदना और नागा भरत ढाका, ये दो हैं हीरो। मिशन आगमन नाम से इस अभियान का संचालन हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया है। विक्रम 1 शनिवार को यानी कल बादलों से घिरे मौसम के बीच दोपहर 12:05 पर सफलतापूर्वक रवाना हो गया। अंतरिक्ष में पहुंचा वंदे मातरम। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लिखा वंदे मातरम संदेश वाला पोस्ट कार्ड भी कक्षा में पहुंच गया है। इसलिए कहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचा वंदे मातरम। प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए स्काई रूट के अधिकारियों को बधाई दी है। कई वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के पोस्ट कार्ड्स भी भेजे गए हैं इस मिशन में। आज भारत की यह पहली निजी कंपनी है जिसने रॉकेट को कक्षा में स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से भारतीय भारत

भारतीय टीम द्वारा शत प्रतिशत स्वदेशी तकनीक से तैयार मेक इन इंडिया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने देश में स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। और हम आपको बताएं, ये जो दो संस्थापक हैं कंपनी स्काई रूट के, पवन कुमार चांदना और नागा भरत ढाका, ये दोनों जो हैं इन्होंने मिलकर ये कीर्तिमान देश के लिए किया है। और चांदना कहते हैं कि सपनों की कोई मैथ्स नहीं होती। अब अखबार ये लिखती है कि 12वीं गणित में 51 नंबर थे, अब उसी पवन चांदना की दुनिया कायल हो गई है। दोनों ने इसरो की नौकरी को अलविदा कहे स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की और इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरी लगन के साथ आज निजी क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है इन दोनों ने। विक्रम वन की सफलता भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस कामयाबी के फायदे हो सकते हैं वैश्विक कारोबार के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। भविष्य के रॉकेट और अंतरिक्ष मिशन और होंगे बेहतर। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये बुलंदी है भारत की निजी क्षेत्र में।

0: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करें और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब एक नजर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल हेडलाइंस पर। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्थिति को देखते हुए पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, हाई कोर्ट के आदेशों और विशेषज्ञों की सलाह पर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। आर्टिकल 370 बेस्ट फिल्म, यामी गौतम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, संजय मिश्रा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भूस्खलन, मानसरोवर यात्रा रुकी, अरुणाचल के भी 35 गांवों में बाढ़। दिल्ली NCR में कल से होगी बारिश, भारी बारिश के अलर्ट के बाद श्री अमरनाथ यात्रा भी टली। CBSE 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जॉर्डन में ईरान का हमला, 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान ने 5 विमानों को नष्ट करने का भी दावा किया है। बांग्लादेश में भगवान राम की मूर्ति बनवाने वाले की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन हुआ है। गिरफ्तार हरिदास के पक्ष में बौद्ध, ईसाई समेत अल्पसंख्यक एकजुट, ढाका में रैली। खेलों की दुनिया में फुटबॉल का बुखार चढ़ा है, आज फाइनल है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बाकी खेल हेडलाइंस पर, एक नजर दौड़ाते हैं। 2 साल बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची सिंधु, जापान ओपन, यागा गुची से होगी खिताबी भिड़ंत, भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु। मीरा और लवलीना होंगी राष्ट्रमंडल खेलों में ध्वज और बैटन वाहक। और आज लॉर्ड्स में सीरीज जीतने से ज्यादा रोहित पर होंगी नजरें। हिटमैन के संन्यास की अटकलों के बीच तीसरे वनडे में टकराएंगे भारत और इंग्लैंड। श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर हैं दोनों टीमें। 2004 से लॉर्ड्स में वनडे मैच नहीं जीता है भारत। 22 साल बाद लॉर्ड्स में पहली जीत की दरकार है। वाशिंगटन की जगह हर्ष टीम में शामिल हुए हैं, पहले बल्लेबाजी करने के फायदेमंद। तो अब जो खबर है वो है कि सबकी निगाहें आज फीफा वर्ल्ड फुटबॉल कप के फाइनल पर हैं। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा घमासान। फाइनल कोई भी जीते पर बदलेगा 96 साल का इतिहास। मेसी की बात करें तो इनके पास कीर्तिमान बनाने का एक और मौका है। यमाल का भी धमाल कम नहीं होगा।

0: और अब यहाँ हम रुकते हैं, प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा।

कुल मिला के रोमांचक होगा मुकाबला। श्रेष्ठ आक्रमण और बेहतरीन रक्षण देखने को मिलेगा इस मैच में। अमेरिका में होना है ये मैच। फुटबॉल का जो बुखार है वो हमारे देश में भी कम नहीं है। आज ट्राई सिटी में कई जगह फुटबॉल जो अकेडमीज हैं वो तैयारी कर चुकी हैं ये मैच दिखाने के लिए। आज रात फुटबॉल के साथ धड़केगी ट्राई सिटी की धड़कने। पूरे देश के जो फुटबॉल प्रेमी हैं, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में तो विशेष तैयारी है साहब। लोगों में उत्साह है, एक जुनून, संघर्ष से जीत की ओर बढ़ने का खेल है फुटबॉल।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक दोस्तों आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस पहले पंजाब हरियाणा के मौसम की बात करते हैं आज से बारिश भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है पठानकोट की चक्की नदी उफान पर है आज उत्तर हरियाणा पंचकुला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल में हल्की बारिश बताई गई है कल से जो भारी बारिश की चेतावनी है अब पंजाब की बाकी जो खबरें हैं अखबारों में जो हेडलाइंस बनी है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक में 14वें पायदान पर पंजाब है अमृतसर पुलिस ने 5.5 किलो हेरोइन और 2 पिस्तौल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पंजाब हिमाचल से 3 साल तक बिजली खरीदेगा पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा का निधन लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय थे पंकज शर्मा और पंजाब में सरकारी स्कूलों में प्रीपेड मीटर बने मुसीबत रिचार्ज खत्म होते ही अपने आप कट जाती है बिजली बिजली के बिना बच्चे बैठने को मजबूर हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हरे कृष्णा मंदिर राज्यपुरा की ओर से 22 जुलाई को आयोजित होगी ये भव्य रथ यात्रा हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी

0: सुपर 100 योजना के 62 विद्यार्थियों ने नीट 2026 में पाई सफलता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाना बनेगा नशा मुक्त समाज का प्रहरी, जन भागीदारी से चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव को जन आंदोलन बनाने के दिए निर्देश। हर पौधे की होगी जियो टैगिंग, अवैध कटान पर होगी सख्ती। 30 जुलाई से 3 अगस्त तक 5 जिलों के दौरे पर जाएगा हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व। सरकारी स्कूलों में एआई और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, कौशल शिक्षा का होगा विस्तार और नवंबर में निकलेगी हरियाणा पुलिस की नई भर्ती। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में अगले साल अप्रैल तक होगा एसआईआर। हमीरपुर में 300 करोड़ की लागत से बनेगा डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर। हिमाचल में 3 दिन अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में 20 जुलाई से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में भी भारी वर्षा 20 जुलाई से ही। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस। अब यहाँ एक छोटा सा अंतराल।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि एचआईवी पॉजिटिव माँ भी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान एचआईवी टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे एआरवी दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी एचआईवी नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। यूटी चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, अब प्रोग्राम में समय बहुत कम है, जाते जाते आपको शहर की बिजली के बारे में जानकारी दे दें। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते आज राजभवन गेट, राजभवन गेस्ट हाउस के हिस्सों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे सेक्टर 43 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के हिस्सों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और सेक्टर 43 के हिस्से में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। और हम आपको बता दें कि उमस के बाद अब मेघों का प्रहार, 3 दिन झमाझम बारिश के आसार हैं। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। फिलहाल हम अपनी रफ्तार को ब्रेक देते हैं क्योंकि प्रोग्राम का समय समाप्त होने को है। अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया के लिए रवाना।

0: होंगी। ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जांजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिनवेई भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए विकल्पों पर बातचीत करेंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेंगे। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एस्टोनिया उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव भी हो सकता है। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि दिन में 11 बजे यादों का कारवां ये प्रोग्राम आप सुनेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये विशेष श्रृंखला आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। आज इस प्रोग्राम में ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर बलजिंदर कौर की कहानी

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। आपसे लेकर 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे, बातें करेंगे जी किसी एक मुद्दे पर। वो मुद्दा है आज मन से जुड़ा हुआ। लोकोक्ति है बहुत पुरानी प्रेरणादायक कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस पर आप हमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ पर हम कभी हताश होने लगते हैं, हार मानने लगते हैं, लेकिन मानते मानते फिर मन पर काबू पाते हैं और जीत की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस विषय पर अपने विचार हमसे साझे कर लीजिएगा और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को हमारे बहुत सुनने वाले सुनते हैं और नंबर लगाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ हमारे ऐसे श्रोता भी हैं जो आज चाहेंगे कि कॉल करें, नंबर मिलाएं, तो हम आपके लिए दुआएं करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारे नए श्रोता भी इस प्रोग्राम में जुड़ें और बात करें। जुड़े तो हैं, सुन तो रहे हैं, प्रोग्राम को सुनते भी हैं, लेकिन जुड़ने का मौका नहीं मिलता है। तो आज कीजिए ना ट्राई, आज तो छुट्टी है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज दृढ़ निश्चय कीजिए कि फोन मिलाएंगे और बात करेंगे। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को डायल करना है और हमसे बातें कर लेना है। और बातें करते वक्त ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास किसी तरह की कोई शोर ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अच्छे से बात हो। बहुत लोग सुनते हैं भाई, केवल हम ही नहीं, बहुत लोग सुनते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज करते हैं मन की। हेलो चंडीगढ़।
1: अनिल जी आपको नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं सुशील शर्मा हिमाचल से बोल रहा था।
0: वाह सुशील जी, आज तो आप पहले पहल पहुंच गए, कमाल कर दिया आपने।
1: जी सर, जी सर फोन जा रहा था तो लग गया पहली कॉल, शायद पहली ही होगी।
0: ये तो क्या जादू किया?
1: जादू तो कुछ नहीं अनिल जी, बस कभी जिसको बोलते हैं कभी
0: कैसा जादू डरा रे।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
1: अनिल जी विषय पे आपके है बड़ा ही अच्छा विषय रख रहा है, आपके सारे विषय ऐसे तो अच्छे ही होते हैं।
0: आपका मत है
1: ये तो जो आपका आज इस पे, तो मैं ये कहूंगा कि बोलना तो आसान है अनिल जी। बोलना तो आसान है, ऐसे जो है कोई जो
0: करना मुश्किल है।
1: मुश्किल ही होता है एक्चुअल में
0: जी,
1: मुश्किल तो होता है इसमें, तो इसमें दो राय भी नहीं है, क्योंकि जब वो आदमी
0: मुश्किल तो होता है,
1: किसी मुसीबत में पड़ता है, कभी कठिन जीवन में कठिन परिस्थिति
0: आती है।

0: सबके जीवन में,
1: तो मतलब संभालना तो खुद ही पड़ता है अपने आप को। सबसे बड़ी बात ये मोटिवेशन, मतलब खुद मोटिवेट होना पड़ता है छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे मतलब आप उदाहरण ले सकते हैं, आसपास देख सकते हैं, खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है। कोई किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, और लोग तो जिसको बोलते हैं लोग सलाह देते हैं, ज्यादा साथ कोई नहीं देता।
0: देखिए करना तो आप है
1: जी सर।
0: और आपने बड़ी बहुत अच्छी बात कही कि संभालना, वो संभालना ही तो निश्चय है
1: जी सर।
0: वो संभालना ही तो निश्चय है। और जब आपने निश्चय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा
1: जी सर,
0: मैं
1: जी
0: करके
1: सर,
0: रहूंगा जी तो सर, करते हैं आप। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बताइए।
1: मैं ये कह रहा था कि लोग लोग तो साथ कम देते हैं, सलाह ज्यादा देते हैं।
0: तभी तो कहते हैं कि सुनो सबकी
1: जी सर, जी
0: सुनो सबकी, करो
1: अपने मन की,
0: मन की
1: बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट तो खुद ही होना है सर।
0: क्योंकि क्योंकि इस राह में सुशील जी गिराने वाले भी हैं, उठाने वाले भी हैं, सहारा देने वाले भी हैं।
1: उठाने वाले कम हैं नीर जी,
0: और राह दिखाने वाले नहीं, उठाने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है,
1: लेकिन कम है उनकी जो है
0: वो एक नहीं, वो 100 में एक ही काफी है
1: जी सर।
0: वो 10 लोगों को उठा देगा
1: जी सर,
0: क्योंकि वो मन से निश्चय कर चुका है, मन जीत चुका है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। मोटिवेट तो जैसे मैं कह रहा था, मोटिवेट हमें खुद होना है,
0: होना है।
1: तो अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनियां पढ़ सकते हैं, हम आसपास देख सकते हैं
0: जी।
1: और हमारे को जिसको एक सबसे कमजोर तबका है, जो गरीब है, जो मजदूर है, या कोई विकलांग है, जो जिसको दिव्यांग शब्द जो है अब प्रयुक्त होता है, उनको उनसे मोटिवेट हो सकते हैं हम
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनकी लाइफ कितनी कठिन है, हमारे से तो बहुत जो है जिसको बोलते हैं बुरी अवस्था में है, लेकिन फिर भी जिंदगी जो है जी रहे, जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, जो है अपने आप को जो है मतलब दिव्यांगता को मतलब अभिशाप नहीं बनने दिया है।
0: जी जी बिल्कुल जी। सुशील जी आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को जब हम संभाल लेते हैं तो उसी पल से हम निश्चय कर लेते हैं कि मन से मैं हारूंगा नहीं बल्कि जीत जाऊंगा। आप महापुरुषों की बात कर लीजिए, ऋषि मुनियों की बात कर लीजिए, कठिन से कठिन कार्य उन्होंने किया, क्यों किया, हमारे गुरुओं की बात कर लीजिए, कठिन से कठिन साधना उन्होंने की, हर एक चीज को साध लिया, क्यों साधा, क्योंकि मन से निश्चय कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जब मन की बात होती है तो एक रचना हमेशा याद आती है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें।
1: जी सर, जी सर, जी सर।

इस प्रार्थना को सुनने के बाद दोस्तों, आप भी महसूस करेंगे कि मन को कितना संबल मिलता है, मन मजबूत होता है। तो चलिए मन से जुड़ी बातें करेंगे कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये चलाते अच्छी लगती हो, तो मैंने कहा आप ही चला सकते हो क्या, हम लोग भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं औरतें। मर्दों को प्रॉब्लम होती है, मर्दों को क्यों होती है, उनको जेलस होती है, अरे ये औरत ऐसी हो गई, अरे औरतें चलाने लगेंगी तो हम लोगों का क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ने देते औरतों को। तो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, बिना उनकी बात सुने, बिना उनकी बातों पे गौर किए चलती हूँ।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
3: और वाकई दोस्तों आगे बढ़ने के लिए मन को जीतना पड़ता है, मन को हाँ कहना पड़ता है। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
3: जी। Hello? वेलकम जी।
4: नमस्कार अनिल जी। मैं जी
3: नमस्कार
4: जी। बोल रही हूँ पंचकुला से
3: जी, सेक्टर 4 से।
4: सेक्टर 4 से
3: जी।
4: बहुत बड़ी

0: क्या बढ़िया टॉपिक लाए आज
1: जी।
0: इसकी अपने एग्जांपल इसकी बात की मैं ही एक एग्जांपल हूँ
1: जी,
0: क्योंकि जितनी मुसीबतों के पहाड़ मैंने झेले हैं, जितने कष्ट मैंने सहे हैं, पर वही मेरे डॉक्टर हैरान होते थे कैसे आप पार उतर जाते हो। मैंने कहा मैं वो हूँ कि जैसे कुछ तकलीफ आई है तो मैं सोचती हूँ मैं करोड़ों से अच्छी हूँ, पर वाले जो कष्ट दिया वापिस ले ले। और बहुत जीत पाई है इस पे मैंने।
1: अच्छा, तो बेदी जी
0: संभाल के रखा।
1: हाँ, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थिति थी तब मन में बहुत से ख्याल आए होंगे, बहुत निराशा भी आई होगी, तो ऐसे में
0: निराशा को नहीं मैं आने पास आने देती।
1: अच्छी बात है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए फिर ये बताइए।
0: करना क्या चाहिए, अपने आप को ये समझाएं कि ये दुख सिर्फ आपके साथ नहीं है, करोड़ों के साथ इससे दुगने तिगने दुख है। आप फिर भी लकी हो कि इतने में ही आपका छुटकारा हो गया
1: जी।
0: जैसे ये कष्ट आया, आप देखो मेरे को 8 ग्लूकोमा कालम होती है जिसको कहते हैं, बड़ा डेंजरस है। जब हुआ तो 8 साल मैं दवाई से रही, तो 8 साल बाद फिर मैं लेजर आ गया। अब 9 साल हो गए मुझे लेजर कराए हुए। अगर मैं डरती रहती, मन को कहती कि नहीं कालम होती है मुझे अंधा ही कर देगा, मुझे ये कर देगा, नहीं, सूरज की रोशनी की किरण सामने रख के बात करी अपने आप।
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: हाँ, मैं इस मामले में ये हूँ, थोड़ी आपको पता है मैं योग में हूँ, अब तो बहुत आगे निकल आए हैं, ऊपर वाले से बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब सूरज की किरण को आपने मन के द्वार,
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब हम थोड़ी करते हैं मेडिटेशन बैठ के, तो हमारे जो माथे के ऊपर होता है आज्ञा चक्कर, तो उसमें हम काला अंधकार ही देखते हैं, धीरे धीरे सूरज की रोशनी अंदर आती जाती है तो वो जगमग हो जाता है। वही मेरा मन है कि एक बार तो निराशा होती है कि मुझे ये तकलीफ क्यों हुई, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, जिसने दिया वही वापिस लेगा। और अपने मन को समझाएं, मैं समझाती हूँ कि मेरे से भी बहुत ज्यादा दुखी है दुनिया।
1: जी जी जी जी,
0: तो वो मेरे को शक्ति देता है ठीक होने की।
1: और जब कभी ऐसा लगता है तो आप इस तरह से अपने आप को समझाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और मन को जीत का नया मोड़ देती हैं।
0: हाँ, नया मोड़ देती हूँ। मेरे को लगातार कई तकलीफें आई मेरी फादर की डेथ के बाद, कभी मेरे को ऐनक लग गई, हर्पीस निकल आई जो इतनी डेंजरस होती है। आप देखिए मैंने ऐसी दवाई खाई, 3rd दिन तो वापिस हो गई वो।
1: जी जी जी।
0: और 15 दिन बाद मैं अपनी क्लास में बैठी थी।
1: और जो मन की जीत वाली बात है वो एक्चुअली उसे विल पार कहते हैं, विल पार कहते हैं।
0: मन को समझाया कि अब तो पार उतरना ही उतरना। थोड़ा सा मन को अनिल जी हर बात में पक्का रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि जरा सी बात हुई, 10 लोगों ने आपको सलाह दी कि आप ये करो वो करो शायद ठीक हो जाए। मैं इस मामले में कहती हूँ मुझे कोई सलाह ना दो।
1: जी जी जी जी जी,
0: क्योंकि मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, मेरे को जो ऊपर वाले का आदेश आएगा वही मानूंगी।
1: तो मुझे लगता है आप सुनती तो सबकी है लेकिन करती अपनी मन की।
0: करती इसलिए कि मुझे पता है कि आई एम नॉट रॉन्ग।
1: जी जी जी,
0: जैसे लोग कहेंगे ये टेलर ये डॉक्टर बदल कुछ, मैंने कहा सलाह मांगू तो दो, अदरवाइज अपने पास रखो, थोड़ी आपको पता है मैं मुंह फट हूं।
1: नहीं, आप सुन भी लिया करे ना।
0: सुनने की बात ये है ना कि मुझे
1: उससे क्या है, लोगों को लगता है कि बेदी जी ने मेरी बात सुन ली।
0: नहीं, मैं ये नहीं परवाह करती।
1: जी जी जी,
0: अगर परवाह करने लगे तो हम अपने, देखो मैं ऊपर वाले साथ जैसे बैठ के मेरे साथ साथ चलता ऊपर वाला।
1: जी जी,
0: इस तरफ देखूं तो वो है, उस तरफ देखूं तो वो है। वो यही तो कहते हैं कि अपने मन को पक्का रखो, एक सील होती है जो पत्थर की, ऐसा मन रखो, ये नहीं है कि बात बात में डावाडोल हो जाओ।
1: बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं और आपकी बातें हमेशा आशा से भरी होती हैं।
0: नहीं, थैंक यू थैंक यू,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे बात करती हूँ ना तो टॉनिक और भी ज्यादा।
1: अरे अरे अरे अरे, सो नाइस ऑफ यू। और आप इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारे साथ जुड़ी रहें।
0: और मेरी आकाशवाणी परिवार के लिए 90 साल की दुआएं ढेरों ढेरों ढेरों बार।
1: जी शुक्रिया जी, बेदी जी बात करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुन रहे हैं इस समय विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं. तो आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में जो विषय हमने चुना है वो मन से जुड़ा हुआ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है. ये पुरानी एक लोकोक्ति है, बहुत ही मशहूर है. और जब कभी हम हताश होते हैं, घबराने लगते हैं, होता है हर की जिंदगी में होता है, तो ऐसे में जब हम शायद इसे याद करते हैं,

0: से अपने जहन में ले आते हैं तो हमारी हार जो है वो धीरे धीरे जीत में बदलने लगती है। तो आइए अब अगले श्रोता क्या कहना चाहते हैं ये सुन लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: जगह का नाम है कोटखाई और नाम है मेरा राकेश।
0: राकेश जी कोटखाई से।
1: जी जी जी जी
0: जी जी जी जी क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में? जी
1: जी, टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मन के हारे और मन की जीत, तो मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मानो कि हम मन से कुछ चीज हार जाते हैं तब भी हम दुखी हो जाते हैं, जब हम मन से कोई चीज जाते हम खुश हो जाती है, तो हमें मन के हारे में नहीं रहना चाहिए, हमें मन को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। तो मैं इसको ये मानता हूँ कि किस तरह से चाहे कुछ भी हो या क्या भी हो, हमें मन के हारे नहीं रहना चाहिए, मन की जीत पे हमें खुश रहना चाहिए। अगर हमारा मन खुश हो जाता है तो पूरा सभी हमें संसार खुश हो जाता है।
0: यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है।

0: आई सी
1: जी जी जी जी
0: जी जी जी जी क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में?
1: टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मन के हारे और मन की जीत, तो मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मानो कि हम मन से कुछ चीज हार जाते हैं तब भी हम दुखी हो जाते हैं, जब हम मन से कोई चीज जीतते हम खुश हो जाती है, तो हमें मन के हारे में नहीं रहना चाहिए, हमें मन को हमें प्रसन्न रखना चाहिए। तो मैं इसको ये मानता हूँ कि किस तरह से चाहे कुछ भी हो या क्या भी हो, हमें मन के हारे नहीं रहना चाहिए, मन की जीत पे हमें खुश रहना चाहिए। अगर हमारा मन खुश हो जाता है तो पूरा सभी हमें संसार खुश हो जाता है।
0: यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी जी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, देखो हमारे हमारे हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये नहीं सोचना क्या हो रहा है, सिर्फ हमें परमात्मा पे छोड़ना है, अपने मन को हमने खुश रखना है।
0: और मुझे मुझे लगता है राकेश जी कि हर स्थिति में अपने आप को सम रखना या अपने आप को नियंत्रित कर लेना तो मुझे लगता है वही जीत है।
1: वही जीत है। ऐसा नहीं कि हमें कोई तकलीफ ना हो, तकलीफ होती है लेकिन हमें उस तकलीफ को भूलना है। जैसे कि हम खुशी को, जब हम कई बार हम खुश होते हैं तो हम उस बात में खुशी को हम दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन जब हम मन को चोट पहुंचते हैं तो हम दिल में रख लेते हैं, फिर हम उस चीज को दिल में नहीं रखना, उस चीज से हमें भूल जाना।
0: क्या बात है, क्या बात है राकेश जी, बहुत खूब आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: जी जी धन्यवाद।
0: दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो उसका मनोबल है, यानी मन का जो है बल, मनोबल। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, संसाधन हों, शारीरिक क्षमताएं हों, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का जो दिमाग है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है, यदि इरादा पक्का है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो फिर यही मन की जीत है। तो इन बातों का अगर हम ख्याल रखकर जिंदगी में आगे बढ़ें तो चुनौतियां तो आएंगी, दुश्वारियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब मन काबू में होगा, मन मजबूत होगा, डमाडोल नहीं होगा, घबराएगा नहीं, तो मन जो है एक निश्चल भाव से आगे बढ़ता जाएगा और जीत हासिल करता जाएगा। जीत मिले या ना मिले लेकिन हम निराश नहीं होंगे, उस निराशा को भी किसी न किसी मोड़ पर आशा में बदल लेंगे। तो इन बातों का ख्याल वाकई जब हम ले आते हैं अपनी दिनचर्या में तो इसका असर दूरगामी होता है। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी गुड मॉर्निंग, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: समृता डोगरा बोल रही सर
0: जी।
2: आप तो हिमाचल आ गई जी।
0: जी जी जी, समृता जी कमाल है, आप यहाँ होती हैं तब भी फोन मिल जाता है आपका, आप हमीरपुर होती हैं वहाँ भी मिल जाता है।
2: बिल्कुल सर, वो मन से ही मिलाती हूँ ना।
0: और हमारे राकेश जी कोटखाई से, उनके भी बा कमाल है भाई।
2: हाँ जी सर, हिमाचल में थोड़ा हमारा ये स्टेशन लगाने में मेरे को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है।
0: या थोड़ा ये तो नहीं होता कि थोड़ा आप सभी लोग हाइट पे रहते हैं तो जल्दी मिल जाता है?
2: नहीं सर, मेरे तो यहाँ हमीरपुर तो प्लेन है।
0: हाँ
2: अच्छा। हमारा है ना ये नॉर्मल है, वो जी, जी, जी। तो थोड़ा हाइट है, कोटखाई भी मैं घूम के आई, वो भी 100 है, बट सर वो मन से मिलता है ना।
0: जी नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए बताइए स्मिता जी, क्या कहना चाहेंगी मन के हरे हरे? जी
2: मैं कह रही कि लोकोक्तियां बड़ी याद करते थे स्कूल टाइम में ना, तो इनके इतने मीनिंग समझ में नहीं आते थे, एग्जाम देने के हिसाब से करते थे। अब ये लोकोक्ति जो है इसका मतलब ये है, मैं सोचती थी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वाला गाना गलत है, भी दिल में नहीं दिमाग में ख्याल आता है। आज ये लोकोक्ति सुनी आपसे दोबारा तो मुझे लग रहा है कि मन में ही आता है, जैसे हम कहते हैं कि मैंने मेरा आज मन नहीं है ये काम करने का, यहाँ जाने का मन नहीं है, तो मन से ही सब कुछ चलता है। अगर मन एक्सेप्ट करता है तो सब सही है। एक बार आप मन को पूछो।
0: हाँ,
2: मन
0: आपका, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, जब मन ये मान लेता है
2: हाँ जी,
0: तो वही जीत जो है वो शुरू हो जाती है।
2: और बिल्कुल सर, आपने अंदर हैप्पीनेस आ जाती है चाहे कैसे भी हो।
0: तो आपने तो स्कूल चलाया है
2: जी सर,
0: है ना, तो स्कूल में बच्चों को क्या बताया कभी इस मामले में, इस लोकोक्ति के बारे में?
2: बिल्कुल सर, मैं अपने एग्जांपल देती कि कैसे कैसे कई दिक्कत होती ना, जैसे जी

0: जीवन में ऐसे मेरे मेरा एमए में मेरा वो कंपार्टमेंट आ गया था, मेरे को पता था मेरे 28 नंबर आने चाहिए, सिर्फ 33। लैंग्वेज पेपर बड़ा टफ होता ना, तो मैं बच्चों को बताया कि मैं आज प्रिंसिपल हूँ, बट मैं अपने मन से, मेरे नाना नानी आए थे, मैं उनसे बड़ी बातें करने बैठ के, मुझे पता मेरा कल्याण हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था,
1: ये हिंदी का पेपर था,
0: लैंग्वेज का, एमए इंग्लिश,
1: जी जी,
0: बड़ा ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट होता है, टफ होता है बड़ा, सर ये वाला एक ही पेपर,
1: जी जी जी।
0: तो मैंने कहा मेरी भी कंपार्टमेंट आई है, मैं सोचना कि प्रिंसिपल है तो टॉपर ही रही होगी। तो अपने मन को मनाओ कि जो है हम कर सकते हैं, मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता, खुद से ही कंपटीशन करो। पहली बात मैं बताती थी बच्चों को, अपने ही नंबर बढ़ाओ, अगर आप 33% वाले हैं तो 35-40 पे जाओ, फर्स्ट वाले से अपने को मत कंपेयर करो, अपना मन मनाओ कि मैंने खुद से ही कंपटीशन लेना है।
1: उसे देख के मन की हार ना हो जाए।
0: हाँ जी सर, क्योंकि वो इतना परसेंट तक जाना जरूरी है, जो फेल हो रहा है उसको पास होने के वाले तक पहुंचने की कोशिश करनी है।
1: बहुत तुम अपने बहुत से कंपटीशन करो, यानी आप अपने जीवन का उदाहरण अपने विद्यार्थियों से आप साझा कर दे थे।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि वो सोचते ना कि ये बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़े, मैं कहा हम सरकारी स्कूल टाट पट्टी वाले स्कूल वाले हैं।
1: नहीं, सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया होता है आज के डेट में।
0: आजकल कहाँ डालते बड़े बड़े मंत्री मंत्री, बड़े लोगों की अगर बात करूं तो लोग एकदम ऐसे मुंह बना लेते हैं।
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
0: गवर्नमेंट स्कूल आज के, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बेस्ट।
1: सरकारी स्कूलों में आप देखें तो स्मार्ट स्कूल बन गए हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो खैर, आपने जिस तरह से अपना उदाहरण बच्चों को बताया तो वाकई वो काबिले तारीफ है। और इस तरह की बातें जब हम छोटे बच्चों को बताते हैं तो आधार उनसे उनका मजबूत होता है, निश्चय वो कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, महान संत कबीर दास जी ने भी अपनी वाणी में इसी सत्य को कि मन के हारे हार है मन के जीते जीते, इसके लिए भी कहा है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की परतीति। तो ये है जो संत कबीर जी ने कहा। और अब हमारे अगले श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है, नाम बताइए। लौट गए हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, यहाँ एक गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ, वो आपके लिए हम प्ले करते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, हौले हौले से ये गाना आपको सहलाता है और धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ये गाना।

0: और ये उदासी भरे दिन तभी ढलते हैं जब हम मन से निश्चय कर लें हार ना मानने की। तो मन पर जीत काबू पा लें तो जीत हमारी है। आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक दोस्तों मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कीजिए और बातें कीजिए। इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर आपके कोई जीवन की घटना है, कोई संस्मरण है, कोई याद है पुरानी जो आज भी आप याद करते हैं तो अच्छा लगता है, सबको एक राह दिखाती है। तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को मिलाना है और हमसे बातें कर लेना है।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये चलाते अच्छी लगती हो, तो मैंने कहा आप ही चला सकते हो क्या? हम लोग भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं औरतें। मर्दों को प्रॉब्लम होती है, मर्दों को क्यों होती है, उनको जेलस होती है, अरे ये औरत ऐसी हो गई, अरे औरतें चलाने लगेंगी तो हम लोगों का क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ने देते औरतों को। तो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, बिना उनकी बात सुने, बिना उनकी बातों पे गौर किए चलती हूँ।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: वेलकम बैक दोस्तों लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम फिर आपके साथ हैं आज का टॉपिक है आप सबको मालूम है जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है उन्हें हम बता देते हैं कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत है तो मन को जीतने के लिए सबसे पहले हमें निराशा के दौर में मुश्किलों में हार नहीं मानना अपने आप को ना नहीं कहनी आगे बढ़ते हुए अपने कदमों को रोकना नहीं है बल्कि

मन के संबल से उनमें और मजबूती पैदा कर आगे से आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप निराश होकर बैठ जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी नहीं बल्कि स्थिति और नाजुक होती जाएगी। तो धीरे धीरे जब हम अपने संबल को बढ़ाते हुए, मन को जीतते हुए, मन पर काबू पाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें लगता है कि निश्चय ही हमें वांछित फल जो है वो मिलता है। तो तभी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है।

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये है हमारा आज का टॉपिक। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी जो है जानकारी दी है, वो क्या इस टॉपिक को लेकर समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो उन्होंने बताया। और जीवन में जहाँ जहाँ उन्हें मुश्किलें आईं, उन मुश्किलों का सामना किस तरह से मन को जीतने के साथ उन्होंने किया, ये वाकई ऐसी बातें जो हैं हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं और हमारे जहन में हमेशा बसी रहती हैं। जब कभी ऐसा कोई मोड़ आता है जीवन में, तो ये बातें यकायक हमारे दिमाग में चली आती हैं और हमारा मनोबल बढ़ाने लगती हैं।

ये जो लोकोक्ति है बहुत पुरानी है और बचपन में अपने बड़ों से सुनते सुनते स्कूल तक जब हम पहुंचते हैं तो इसका सही अर्थ हमें समझ आने लगता है और ये अर्थ हम अपनी किताबों में लिखते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं और अपनी समझ के मुताबिक जब हम इन्हें विस्तार रूप देकर आगे बढ़ाते हैं तो हमें धीरे धीरे इस लोकोक्ति के जो गहरे मायने हैं वो समझ आने लगते हैं। और जब हम दुनियादारी में आते हैं, दुनिया के रंग ढंग देखते हैं, दुनिया के उतार चढ़ाव देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि इस लोकोक्ति में कितनी गहराई है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके आसपास भी जहां हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जब एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है किसी काम को करने का, अपनी मंजिल को पाने का, अपने लक्ष्य को पाने का, वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता है, ना यहां देखता है ना वहां देखता है, बस अपने लक्ष्य पर एक नजर और जीत हासिल। तो ये सब इसी बात को लेकर है कि मन के जीते जीत है। तो मन का जीतना तभी है जब हम मन से हारे नहीं, बस अपने संभल को मजबूत कर आगे बढ़ते रहें।

मन एक छोटा सा शब्द है दोस्तों, लेकिन बहुत एक व्यापक संसार अपने आप में लिए हुए है और सफलता की कुंजी भी इसी मन में छुपी हुई है। यदि किसी परीक्षा में, व्यवसाय में, खेल में हम असफल हो जाते हैं तो मन से हारने की बजाय अपनी गलतियों से सीखते हुए हम नई ऊर्जा का अपने आप में संचार भर सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी बात है मन जीतने की, वो है तनाव मुक्ति। जीवन की चुनौतियों में जब आप मन को शांत और मजबूत करते हैं, यह मन को शांत करना और मजबूत करना भी जीत ही है, मन को शांत करते हैं और मजबूत रखते हैं तो तनाव और चिंता जो है वो अपने आप दूर होने लगते हैं, यानी वो हम पर हावी नहीं होते। बस यही है कि मन के हारे हार नहीं, मन के जीते जीते। तो आज इस मशहूर लोकोक्ति पर हमने बात की, विचार साझे किए, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मन से मजबूत रहिए। नमस्कार।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 10वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में बहुत सी महिलाओं की प्रेरणा, जिंदा दिल इंसान, ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानी।

0: दोस्तों कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जो तरक्की के रास्ते पर हो और वहां की महिलाओं ने अपना एक बहुत बड़ा योगदान ना दिया हो। या यूं कह लें, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, बुलंदी के शिखर तक नहीं पहुंच सकता, जब तक वहां की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। भगवान ने नारी को, महिलाओं को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जरूरत है अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानने की, और जो महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेती हैं, आज उन्होंने हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे लिए, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही महिला से आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें आपको सुनवाएंगे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास, अपने इरादे को मजबूत बनाए रखा। जिंदगी में संघर्ष करके वो आगे बढ़ती गई और ये संघर्ष आज तक जारी है। जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान हैं बहुत सी महिलाओं की प्रेरणा, जिंदा दिल इंसान, ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर, श्रीमती बलजिंदर कौर। बलजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, बड़ी खुशी मिली।
0: बलजिंदर जी, सबसे पहले बात आपकी परवरिश की करते हैं, जिसने आपको एक मजबूत इरादे वाली और जिंदा दिल शख्सियत बनाया। कैसे आपकी परवरिश हुई और किन हालातों में आपकी परवरिश हुई और आपका जन्म कहाँ पे हुआ?
1: जी मेरा जन्म अमृतसर में हुआ है, और हालात ऐसे हो गए थे कि बचपन का तो पता ही नहीं चला, इतनी मुश्किलें, घर से जैसे कि दंगे हो गए थे और घर से निकलना पड़ गया। आधी रात को हम लोग घर से ही निकले, किसी ने चप्पल पहनी, किसी ने गठड़ी पकड़ी दो कपड़े की, और ऐसे ही निकल गए हम लोग। बस सर अब क्या बताऊं आपको, उसके बाद तो जैसे बचपन खेलने का तो नाम ही नहीं था कि खेलना क्या होता है
0: जी।
1: मम्मी पापा के साथ जैसे हम लोग काम करते जाते, मम्मी पापा करते, हम भी उनके साथ ऐसे हेल्प कर देते। अब बचपन में तो मतलब ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई हो, नाम ही रह गया कि पढ़ना लिखना, क्या होता है स्कूल, कैसा होता है स्कूल, नहीं बिल्कुल नहीं पता। मन था जाएं, कैसे जाएं, कोई बहुत ज्यादा हालात ऐसे थे कि मम्मी को भी पूछते, मम्मी स्कूल जाना है, बैठती कि नहीं, काम पे गएगा, कौन करेगा, मैं नहीं भेज सकती तेरे को। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं भेजना, मत भेजो। रोते रोते स्कूल के बाहर देखते हैं, अच्छा लगता था देख के कि बच्चे पढ़ते हैं, हम नहीं जाते हैं। बड़े मन में फीलिंग है इस गलती,
0: बलजिंदर आप तो इतनी हिम्मती हैं, थोड़ा संभालिए अपने आप को।
1: अब पर
0: आप स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में आपको काम करना पड़ रहा था, मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही थी।
1: जैसे जैसे हम लोग होश संभालते रहे, मजदूरी किया, अब काम मेरे को हर मजदूरी आती है, लेबर का काम मैच कर चुकी हूँ, ईंटें उठाना, रेता उठाना, सुई धागे की रजाइयां तक करना, किसी के घर के बर्तन, सब्जी तक की काम मैंने किया। कभी भी मुझे ये नहीं लगता कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना है, करना है बस, मुझे किसी से मांगना नहीं है, अपना कमाना है, अपना खाना है। बस यही करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मुझे ऑटो चलाना पड़ गया।
0: बलजिंदर जी, जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल को देखते थे, तो हमारा भी मन करता था कि हम भी स्कूल जाएं।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे मन करता था, नहीं मम्मी पापा भेजते थे, काम पे चले जाते, हम रोते रहते, बैठे रहते सारा दिन, पढ़ना नहीं अपने भेजना, तो हम स्कूल नहीं जाते, आपके साथ काम पे जाते हैं, उनके साथ काम पे चले जाते, जहां वो बैठते हम भी उनके साथ करवाते हैं। लोग देखते थे, अरे वाह तुम्हारी लड़की तो अच्छे काम करती है, तुम्हारी पूरी हेल्प करती है, बहुत समझदार है, ये तो बड़ी अच्छी लड़की है। मेरी तीन बहनें हैं, दो भाई थे, भाई की मेरी की डेथ हो गई, पहले बड़े वाले की हो गई, अटैक हो गया था, 24 साल का एक और भाई था, उसकी भी जब 24 साल की उम्र होगी उसकी भी डेथ हो गई। हम तीन बहनें थी, पता नहीं कैसे किसकी शादी की, कब की, कुछ समझ में नहीं आया। 15-16 साल की होश भी नहीं संभालते, तभी कह देते हैं कि लड़कियों की उम्र हो गई, शादी कर दो, अच्छा नहीं देखना, बुरा नहीं देखना, बस कर दो जी, हो गया जी, जो मिलता है उसी के साथ
0: जी। क्योंकि बहुत से लोग, उनकी मानसिकता इस तरह की है, वो ये सोचते हैं कि लड़कियां पराई होती
1: हैं, यही माना जाता है, यही कहा जाता है,
0: समझा जाता है आज भी इस सोसाइटी में।
1: जी बिल्कुल समझा जाता है, कोई ये नहीं समझता कि उसके भी शौक हैं, उसकी भी कई जरूरतें हैं, पढ़ना लिखना, अपने आप

0: खड़े होना, ये सब उसकी भी जरूरत नहीं, बस यही है कि बस उम्र हो गई, शादी करो, हो गई जिम्मेदारी खत्म। पर नहीं सर, ये सब गलत है, ऐसे एकदम से किसी का शादी कर देना या उसको खेलने कूदने के दिन हो जब उसको स्कूल जाने का टाइम होता है उसको, ये सब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को टाइम दो अपना खेलने कूदने का, अपने पैरों पे खड़े होने का।
1: बहुत बलजिंदर जी, आपका बचपन इस तरह से गुजरा तो इन हालातों ने आपको इतनी मजबूत इरादे वाली शख्सियत, एक इंसान बनाया, क्योंकि आपने इतने कठिन हालात देखे बचपन में ही। आपका बचपन पता ही नहीं चला किस तरह से बीत गया।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: किस तरह से आप जवानी की तरफ बढ़ी और आपकी शादी कर दी गई, आपको पढ़ने लिखने भी नहीं दिया गया।
0: बिल्कुल सर,
1: कितना कुछ, बिल्कुल स्कूल नहीं गई आप या कितना पढ़ी लिखी?
0: नहीं, दूसरी तक हम लोग देखते थे एक दूसरे से, बच्चों से पूछ पूछ के हम घर में बच्चे ट्यूशन लगा लेते थे। जैसे हम लोग सहेलियां आपस में बैठ जाती हैं तो वो स्कूल से आती तो हम उसको यही बोलते थे कि तू ना ऐसा कर, अपनी कॉपी पेंसिल लेके और तू ना हमें सिखा दे क्या पढ़ के आई है, हम तेरी तरफ देखेंगे। तो वही सर, हम लोग सहेलियां सहेलियां बैठ के, बच्चे बच्चे बैठ के पार्क में बैठ जाते थे और उसने हमें अपनी कॉपी पेंसिल लानी और हमें बताना कि मैं ये करके आई हूँ, वो करके आई, तो हमने भी उसकी कॉपी पेंसिल ले लेनी। मैंने कहा मैं भी तेरे को करके दिखाऊं, हाँ तू भी करके दे। उससे मतलब मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था, मुझे अच्छा लगता था, वाह स्कूल भी ऐसा होता है, ये सब सिखाते हैं। शौक ही अंदर में थे, बहुत बहुत ज्यादा शौक थे। तो तीन चार सहेलियां थी मेरी, तो उनके साथ हम लोग सच में सर ग्राउंड में बैठ जाना, एक छोटा सा ग्राउंड होता जंगल टाइप ही होता था, अब तो अच्छी पार्कें बन गई हैं, अब तो बहुत सुंदर बन गया, तब एक जंगल सा होता था, बस एक कोने में बैठ जाती तीन चार लड़कियां, झूठी मूठी का ट्यूशन लेना, उसने अपने घर के काम काज करके अपने आ जाना, तो मैंने भी अपने काम काज करके अपने वहां पे आ जाती थी ग्राउंड में आके, तो उसको बोल तू अपना जब आएगी ना तो कॉपी पेंसिल जरूर लेके आना, वो भी दुखी हो जाती थी। रोज सुबह आना, दोपहर में हम लोग ट्यूशन, उसको बोलना तू जब स्कूल से आएगी ना तो आते हुए कॉपी पेंसिल मत बोलना। उसने कहा नहीं मैं बोलूंगी सर। उसने जैसे ही कॉपी पेंसिल लानी तो मुझे देख के अच्छा लगता था, मैंने कहा वाह ये कॉपी पेंसिल लेके आई, मुझे जरूर पढ़ाएगी, मुझे बताएगी कि इसने स्कूल में आज क्या किया कैसे किया। तो उसने सर मुझे एक दो तीन चार पांच तक दस तक मुझे बहुत अच्छी से गिनती आती, उसने मुझे बचपन से सिखाई, जैसे जैसे मतलब वो स्कूल से जो भी मुझे सीख के आती थी वो मुझे आके बताती थी, तो मैं वही कॉपी कर लेती थी। मैं स्कूल तो दूर की बात सर, मुझे बैग का भी बहुत था कि हाई बैग में क्या क्या डालती है, ये कैसे डालती होगी। तो उसने मुझे बैग भी दिखाया, मैं कहा तू एक दिन जब छुट्टी होगा तू मुझे अपना बैग दिखाएगी, कहती क्या करेगी बैग का, मुझे दिखा देना तू बैग कैसा होता है। तो सर मुझे निकाला उसमें उड़ेयाड़े की कॉपी और एबीसी की कॉपी और एक रबड़, छोटी सी रबड़ थी बिल्कुल जैसे आधे नाखून की रबड़ और आधी से आधी पेंसिल थी। मैंने कहा इतना कुछ लेके जाती है, हाँ मेरे को लेके जाना पड़ता है। बस वही सर मैं दस तक गिनती और उड़ाड़ा तक।
1: अच्छा,
0: मैं
1: ये जो झूठ मूठ के आप ट्यूशन लेते थे
0: बस उसी स्कूल में पढ़ी हूँ बस।
1: ये माँ बाप से चोरी करते थे या उनकी परमिशन
0: नहीं
1: के साथ?
0: वो लोग अपने काम पे चले जाते थे, जिस दिन हमें नहीं लेके जाते थे तो हम लोग उसके बीच में अपना टाइम होता था ना तो उसकी कॉपी पेंसिल लेके हम लोग अपना बैठ जाते थे।
1: जी बलजिंदर, आपके बचपन की ये आपने बड़ी अच्छी अपनी कहानी बताई।
0: मैं वही स्कूल समझती हूँ, मैंने वही पढ़ा है, वही मुझे याद है, उसी को मैं चला रही हूँ।
1: वही आपकी जो सहेली, वही आपकी टीचर, आपकी गुरु,
0: वही जो उसने मुझे सिखा दिया वही सब मेरे लिए। सच में ये बहुत अच्छा लगा कि उसको मैं आज भी याद करती हूँ कि यार तू मुझे और पढ़ा देती तो शायद मैं और पढ़ लेती ना, तो बीच में मुझे छोड़ के चली।
1: वैसे आप अब भी पढ़ सकती हैं, आप
0: घर की इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं अब तो मतलब ही नहीं है सोचना।
1: आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत की हम दाद देते हैं। बलजिंदर, आपकी जिंदगी से जुड़ी बातों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर हम आपकी पसंद का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गाना यही सुनाइए, मिले हो।

0: FM 107.2 न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगी नामा। और आज इस कार्यक्रम में हम ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। बलजिंदर जी, आप ऑटो चलाती हैं, तो ये जो ऑटो चलाने की शुरुआत है, ये क्यों हुई, आपको जरूरत क्यों महसूस हुई ऑटो चलाने की?
1: मैंने आपको बताया कि मेरे दो भाई थे, उन दोनों की डेथ हो गई, 24 साल के हो गए, डेथ हो गई। हम तीन बहनें थी और शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी हम लोगों की, शादी भी लंबे टाइम की, आज की बात नहीं है, शादी को भी बहुत टाइम हो गया था
0: जी।
1: तो 10 दिन ससुराल में रहे और घर वाला भी ऐसा था, जीना हराम कर दिया, खाना पीना तो दूर की बात, उसने ला के तो देना क्या, कूट कटाइया पिटाई मार कूट हर रोज का काम था। मुझे तो ये भी नहीं होता था कि बंदे ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं बंदे। अब जैसे जैसे पता चलता कि ये तो बहुत ही गलत है, शायद मुझे लगता था कि ये बंदों की आदत होती है, शायद मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, शायद ऐसे ही होते हैं आदमी। जैसे शादी हुई बिल्कुल पहचान नहीं थी कि आदमी ऐसे होते हैं।
0: जब आपकी शादी हुई उम्र क्या थी आपकी?
1: मेरी 17 साल। तो मुझे अच्छे बुरे की सच में बिल्कुल पहचान नहीं थी, यही था कि हाँ ऐसे होते तो इनके साथ ही गुजारा करना है। थोड़े दिन मैं मार खाई उससे, रोज मारना रोज खाना, आखिर अपने सास को बता दिया। मैंने कहा ये रोज मुझे मारता है, रोज इतना मारना कि वो भी डरती थी, वो कहती मैं क्या करूं, ये तो तेरा अपनी है बात है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तू जाने और ये जाने। रोज रोज मार्केट, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं भी परेशान हो गई, मैं तो मार नहीं सकती थी। ये तो होगी आदमी को नहीं मारते हैं, आदमी वो ना बहुत
0: पति परमेश्वर होता
1: है, यही माना जाता है, पर नहीं, आखिर जब आदमी हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, तो फिर उसका यही इलाज है कि बस हटा दो। मैंने उसको तब हटा दिया, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं गई, मुझे लगा नहीं कि मुझे उसके पास जाना चाहिए या उसकी रोज मार खानी चाहिए, रोटी तो मिलती नहीं है, मास उसकी मार खाओ मुफ्त की, नहीं ऐसा नहीं। मैंने उसको छोड़ा, फिर अपने मम्मी पापा के पास वापिस आई, आज भी मैं माँ बाप के साथ हूँ। जैसे मेरे भाई की डेथ हुई और मेरे पास एक बेटा भी है, मेरा 10 साल का बच्चा है
0: जी।
1: ठीक है, तो भाई की डेथ होने के बाद अचानक मुझे मम्मी के पास आना पड़ा। आई तो भाई का ऑटो था खड़ा, मतलब घर से भी मैं ससुराल से भी परेशान थी, आगे मायके में आई तो और बड़ी परेशानी हो, ना मैं इधर जा सकती ना मैं उधर जा सकती। तो भाई की डेथ के बाद मुझे लग रहा था कि अब घर को संभालने वाला कोई नहीं था, मेरे पापा की भी लात नहीं है, हैंडीकैप है वो एक्चुअली। 2008 में मेरे भाई की डेथ होगी, 2007-8 में ही मेरे पापा के टांग दो उसके लेफ्ट साइड के है लेग टूट गई है, तो मुझे ही और देखना पड़ रहा था। मेरी दो बहन के बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, मम्मी पापा हैं, तो उनको भी मैं ही देख रही हूँ और शायद आगे भी देखती रहूंगी जब तक मेरे में हिम्मत है ताकत है दी है मुझे, तो मैं देखूंगी उनको, मेरा खुद का बेटा भी है उसको भी देख रही हूँ। तो कोई कमाने वाला नहीं था, जैसे हम लोग शुरू से मजदूरी कर रहे थे तो मजदूरी ही करना अच्छा लगता है, किसी के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, अपने पास है जो उसी में खुश है। तो लगा कि मेरे पास ऑटो है, मम्मी को भी मैंने बताया कि मम्मी ऑटो है, इसको मैं कैसे करें, ये तो लोगों को देते हैं वो तोड़ फोड़ देते हैं, या खड़ा खड़ा भी क्या करेगा, बेच के भी इसके कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो और भी तो मजदूरी कर रही हूँ, कभी ईटें उठो रही हूँ, कभी रजाइयां रुई रजाइयों की है वो कर रही हूँ, जब किसी का सब्जी का काम, मतलब जिस तरह की भी मजदूरी मिलती है मैं कर लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे नहीं करनी, मुझे करनी है तो बस करनी है, मैं करती हूँ। आज ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो मेरे भाई का है, जैसे घर पूरा मेरे भाई के ऊपर था, तो भाई की डेथ के बाद मुझे लग रहा था कि ये ऐसे तो खड़ा रहेगा, टूट फूट जाएगा, बेच देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और मजदूरी करने से अच्छा है कि मैं इसको चलाऊं तो देखूं, कोशिश करूं। जब मैं स्कूटर चला लेती हूँ, रेडी भी मैं चला लेती हूँ, साइकिल भी मैं चला लेती हूँ, जब मैं हर काम कर सकती हूँ तो ऑटो क्यों नहीं चला सकती। खड़ा हुआ था, उसमें हवा भरवाई, उसको ठीक करवाया मैंने, तो एक दो बार किसी से पूछा मैंने कि मैं ऑटो चला सकती हूँ।

0: तो बोला तेरे बस का नहीं है, तू क्या कुछ रहेगी, तू नहीं चला सकती, छोड़ दे, तू इसको बेच बूझ दे, कुछ पैसे जो है तो कमा के अपना रख। नहीं, मुझे था कि मैं बेचूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी को दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान होगा, तो मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। जिससे मैंने सलाह ली, उसने कहा नहीं तू छोड़ दे, बेकार का काम है, अच्छी नहीं लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। मैंने कहा लो भाई ये कोई बात हुई, बुरी लगूंगी, मुझे लगता है चलाना चलाया तो चलाना ही है। मैंने उसको उठाया, साफ सूफ किया, हवा भरवाई, मिस्त्री के पास ले गई, ठीक करवाया, किसी की हेल्प ली, ऐसे ही मुझे नहीं आता था तो धक्का धुक्का लगा के मैं उसको ले गई मिस्त्री के पास, उसने थोड़ा बहुत ठीक किया, साफ सूफ किया, बहुत देख के अच्छा लग रहा है यार, मैंने अब इसको ऐसी थोड़ी किसी को दे दूंगी, मैं तो इसको कोशिश करती हूँ। रस्सी मारा उसकी, मुझसे नहीं लगा, रस्सी खींचनी पड़ती है उसकी, तो नहीं हुई मेरे से।
1: जब ऑटो स्टार्ट करते हैं तो एक रस्सी उसमें डाल के तो खींचते हैं। आजकल नए तरह के जो ऑटो आए हैं उसमें रस्सी डाल के खींचना नहीं पड़ता।
0: तो नहीं, उसमें रस्सी वाला था, उसको रस्सी मारते थे तब स्टार्ट होता था, नहीं होता था तो बड़ी मुश्किल लग रही थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और पैसा लगाया और उसको मैंने चाबी वाला लगाया, तो उस मिस्त्री ने कहा कि भाई तू इसको क्या करेगी, क्यों लगवा रही, इसको बेच दे, क्या करेगी। नहीं, मैंने उसको कहा कि मुझे इसको चलाना, अरे तू चलाएगी क्या करेगी, अच्छी लगेगी। मैंने कहा नहीं आप बस कर दो, आपको जो बोला वो कर दो, इसको चाबी लगा दो, मतलब चाबी लगा दो। उसने चाबी लगा दी तो मैंने उसको निकाला बाहर, चलाने में फिर भी थोड़ा मुझे पूछना पड़ा किसी से, एक साथ में जहां मेरी दुकान है एक रजाइयों वाली, मैंने वहां पे किसी एक मजदूर था, जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि ईंटों का भी मैं काम करती हूँ, मजदूरी जो भी मुझे मिलती, तो वहां पे एक मजदूर था, तो मैंने उसको बोला भैया तुम तो रोज ऑटो चलाते हो, बताओ मुझे कि मेरे पास ये ऑटो, मैंने इसको चलाना है तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे। तो कह रहा अगर दीदी आप जिद करती हो ना लंच पे बता दूंगा, लंच करने आऊंगा, तो वो भी मजदूर था। तो जब लंच टाइम हुआ तो जैसे ही 1 बज गया मैंने कहा वो आने वाला है, मुझे बताएगा, बड़ी खुशी हो रही थी अंदर से। तो उसने मुझे सच में जैसे 1 बजा मैं उसके पास खड़ी होगी, मैंने कहा भाई आपने कहा था मैं खाना खाने जब बैठूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, उसने बोला मुझे 10 मिनट दो, वो खाना खाता रहा, मैं उसके पास बैठती रही, मैंने कहा भाई जल्दी खाओ ना, मुझे बताओ ना, चलो 10 मिनट हो गया, उसने खाना वाना खाया, अरे दीदी आप तो पीछे ही पड़ गई हो। उसने मुझे बताया कि ये ब्रेक है, ये रेस है, ये चाबी है, और ये बैठो इस पर ऐसे बैठो, ये शीशा ये है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का शीशा है, पीछे का सेंटर में है, उसने मुझे ये सारा एकदम से बता दिया। तो मैंने उसको उसी तरह के जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से मैंने वो 10 तक गिनती पढ़ी बड़ी अच्छे से, उस लड़की को आज भी याद करती हूँ, तो इसी तरीके में मैंने उस लड़की को जैसे याद रखा, जैसे इसने मुझे ये सारा ब्रेक रेस सब कुछ बताया तो मैंने वो ही दिमाग में रख लिया। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, आप ऐसा करो मुझे ना एक बिठा के ना मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे आप बताओ, मेरे साथ चलाओ। कहता अच्छा, बैठा, उसने मुझे पहले ब्रेक का पैर रखवाया, फिर उसने रेस का मुझे हाथ रखा, फिर आज मैं उस इंसान का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिसने मुझे बताया और मुझे सिखाया, आज मैं उसी को याद करती हूँ।
1: जी, तो बलजिंदर जी इस तरह से आपने ऑटो चलाना भी सीख लिया, और अब जब आप ऑटो चलाती हैं, कितनी देर हो गई है आपको ऑटो चलाते हुए?
0: मेरे को 2013 से मैं चला रही हूँ। तो
1: और जब आपने ये ऑटो चलाना शुरू किया किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको?
0: 2012 से चला रही हूँ, मुझे लग रहा था कि ये पूछ रहे अरे वो लड़की ऑटो चलाती है, हंसते हैं कुछ लोग बीच में, कुछ को अच्छा भी लगता है ठीक है, मगर मैं जब मुझे पूछता ना तू क्यों चलाने लगे क्यों, मैंने कहा आदमी क्या ज्यादा कर सकते हैं, औरतें कुछ नहीं कर सकती, तो वो पीछे हट जाते हैं कि मतलब औरत भी किसी से कम नहीं, मैं उसको बोलती हूँ औरत भी बहुत कुछ कर सकती है, हम भी किसी से कम नहीं, आपको हम रोड पे दिखाएंगे चलता हुआ। तो कभी अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, अपने आप को और बढ़ाओ, कमजोर बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यही सोचते हैं ना कि मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, औरत कुछ भी कर सकती है, हिम्मत होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसने ये मना कर दिया वो नहीं करना, उसने वो मना कर दिया, अरे जो गलत है वो तो हमें भी दिखाई देता हम नहीं करेंगे, जो लगता है हमें जिस कामयाबी पे जाना है अपना कुछ करना है तो करना है बस।
1: बलजिंदर आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत की हम दाद देते हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी बातों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर हम आपकी पसंद का एक गीत अपने को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: यही सुनाइए सर, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: FM 107.2 न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगी नामा। और आज इस कार्यक्रम में हम ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की जिंदगी से जुड़ी बातें कर रहे हैं। बलजिंदर जी, किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा जब आपने पहली बार ऑटो सड़क पर उतारा?
1: बहुत मुश्किलें सर, बहुत ही ज्यादा मुश्किलें, जैसे कि मुझे खुद ही डर लगता था। मैंने ऑटो चलाया, जैसे आपको मैंने बता दिया कि मैंने ऐसे सीख लिया, उससे दो दिमाग में बिठा लिया, चला लिया, ठीक है। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो जो चीज मुझे अच्छी लगती है, शौक है मुझे, यहाँ करना मजबूरी में मान लीजिए मुझे करना है तो मुझे करना है। मैं किसी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हूँ। तो वही है कि अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। जैसे मैंने पहली बार सीखा, पहले अपने फैमिली को बिठाया और उनको बिठा के मैंने कहा, भाई अब मुझे बताओ मैं चला सकती हूँ कि नहीं चला सकती। उन्होंने कहा, और क्या, कैसे चलाएगी, चला तो रही है। अच्छा, ऐसे चलाते हैं, मुझे भी लगता नहीं था सच में और रोड पे आ गई हूँ। तो पहले मैंने अपने घर वालों को बिठाया, वो सब खुश हुए, मुझे और भी हौसला होगा कि इनको अगर मैं वहां से वहां तक बिठा के ले जा सकती हूँ तो इसको मैं और भी आगे चल सकती हूँ। तो मैंने सर वही सुबह की रूटीन बना ली, अपने घर के काम काज के बाद ऑटो को स्टार्ट करना और घर से ले जाना और एक राउंड ऐसे ही चले जाना कि चलो देखते हैं, चलाती हूँ। तो चलाना शुरू किया, उसके बीच में कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग मुझे हौसला भी देते थे, मेरे आस पड़ोस वाली गलियां वाली भी, अरे तूने तो ऑटो चलाना शुरू कर दिया। हाँ भाई, चलाना शुरू कर दिया, अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है, अब कौन करेगा, बहुत हिम्मत है तेरे अंदर जी। बहुत ताकत है, और अपने आप को इसी तरह हिम्मत बनाए रखना, कमजोर मत करना, अपना चलाओ, ठीक है। गली वालों को भी अच्छा लगता है, वो भी मेरे साथ जाते हैं, अब सब जाते हैं, जिसने जो जहाँ जाना होता है, अरे मुझे वहाँ ले जाएगी, स्टेशन पे जाना है, हाँ चलो कोई बात नहीं, कब जाना है, कितने बजे जाना है, चलो। अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना है तो उनको भी लेके जाती हूँ, फटाक से चले जाते हैं। पड़ोसन बोले कि अबे तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले वहाँ जाना पड़ता था ऑटो के लिए, अब तो हमारी गली में ही ऑटो वाली है, मेरा नाम ही ऑटो वाली रख दिया कुछ लोगों ने। तो पड़ोसन बोली, कह रही पहले तो हमें इतनी दूर जाना पड़ता था ऑटो के लिए, अब तो तू पड़ोसन है, जब चाहे हम तुझे बुला सकते हैं। तो वो सर यही करते हैं जब उनको लगता है,
0: एक तरह से उनको सुरक्षित भी महसूस होता होगा। हाँ, कि एक महिला ड्राइवर है।
1: हाँ जी बिल्कुल, उनको अच्छा लगता है, वो समझते हम तो किसी और को नहीं, आपको ही लेके जाएंगे। तो मुश्किलें की आती है, मर्दों को प्रॉब्लम होती है, मर्दों को क्यों होती है, उनको जेलस होती है, अरे ये औरत ऐसी हो गई, अरे औरतें चलाने लगेंगी तो हम लोगों का क्या होगा। वो बेचारे अपने आप को वो सोचते हैं कि हमारा काम काज में मुश्किल, तो कुछ भी सोच सकते हैं उनकी सोचने से, वो मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं औरतों को। तो मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ, बिना उनकी बात सुने, बिना उनकी बातों पे गौर किए चलती हूँ, चलती रहूंगी आगे भी, ऐसा नहीं है।
0: जिस तरह से आप बता रही हैं कि पुरुष ड्राइवर्स इस तरह की बातें करते हैं कि आपका काम नहीं है,
1: कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ये चलाते अच्छी लगती हो, तो मैंने कहा आप ही चला सकते हो क्या, हम लोग भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं औरतें, कम नहीं होती हैं औरतें।
0: तो बलजिंदर, आपकी तरफ देख के और भी कभी महिला ने किसी ने बोला हो ऐसे कि हम भी सीखना चाहती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, अरे बहुत कहती हैं मुझे लड़कियां, कहती हैं अरे दीदी आप ये ऑटो चलाते हो, कब से चलाते हो? तो मैं उनको बता देती हूँ मैं 2013 से चला रही हूँ, आपको सीखना है तो आप जब मर्जी आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो खुशी मिलेगी। तो कई औरतों को सच में बहुत

0: अच्छा लगता है, वो सीखना भी चाहती हैं, तो भी वही घर की जिम्मेदारियाँ, क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे, हमें टाइम दोगी, वो भी करना चाहती हैं।
1: आपको लगता नहीं है कि आप एक ड्राइविंग स्कूल खोल लें ऑटो, जिसमें महिलाएं आप इस तरह का कुछ करके आप महिलाओं की एक तो मदद कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी रोजी रोटी मिलेगी और आपका एक ग्रुप बन जाएगा एक तरह से।
0: बिल्कुल सर, हो अपने आप को कमजोर ना समझे तो औरत कुछ भी कर सकती है।
1: बलजिंदर जी, आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसी रही जब आपने ये ऑटो चलाना शुरू किया?
0: नहीं, उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मुझे ये ऑटो चलाना है, आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू चला, औरतें चला सकती है, तुझे क्या, क्यों नहीं चला सकती तू? तो वही मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि वो बहुत खुश है और उनकी मुझे पूरी सपोर्ट है। आज मेरे पापा हैंडीकैप हैं, एक उनकी टांग नहीं है, मम्मी मेरी बुजुर्ग हैं, घर संभालने वाला कोई नहीं है, उनको बहुत खुशी है, हौसला भी है, उन्होंने मुझे लड़कों की तरह ही जगह दी है, लड़का ही समझती हैं, और आज भी मुझे बहुत खुशी है कि आज भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं और उन्हीं की बदौलत मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि ये सब कुछ करना चाहिए।
1: जी बलजिंदर जी, बहुत से लोग आपसे मिलते होंगे इस दौरान,
0: हाँ जी,
1: लड़कियां भी, तो कभी खास तौर पर लड़कियों ने आपको बोला हो कि दीदी आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, हमने कई बार ऑड आवर्स में रात में या सुबह सुबह हमने बस स्टैंड जाना होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो कई बच्चे स्कूल के लगे हैं सर मेरे पास, स्कूल में छोड़ के आती हूँ, लेके आती हूँ, और कई नौकरी वाली लेडीज है, वो सुबह अपने टाइम देती है मुझे, तो उनके टाइम के मुताबिक जाना पड़ता है, घर का मुझे सारा काम भी कभी छोड़ना पड़ता है कि हाँ उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मुझे जाना है। ऑलरेडी लेडीज को ज्यादा मुझसे बात करना और मेरे ऑटो को ले जाना अच्छा लगता है, वो दिल से मुझे कहती हैं कि हमें सच में दिल से बहुत खुशी है कि आप हमें लेके जाते हो, लेके आते हो, हम आपके सामने सुरक्षित हैं, हमें कोई डर नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब मुझे वो कहती हैं मैं उनके साथ जाती हूँ, और उनको भी लगता है कि वो ही मुझे ले जाएगी, उसी को मैं बुलाती हूँ, तो वो मुझे इस तरीके से फोन करती हैं, ले जाती हैं। कई लोग तो इस तरह से फोटो भी खींचती हैं, मोबाइल में वीडियो भी बना लेती, बैठी रहती है मेरी पीछे वाली सीट में और वीडियो बनाएंगी, तो बाद में उतरेंगी ना तो मुझे क्या कहती है, अरे मैंने आपकी फोटो बना ली, वीडियो बना ली, आपको बुरा तो नहीं लगा? तो मुझे कहा कब? अरे जब हम पीछे बैठे थे। अरे तू मुझे बता देती ना, मैं आपकी तरफ मुंह कर लेती, हंसने लग जाती थी कि वाह, तो उनको भी अच्छा लगता था।
1: बलजिंदर, आपने बताया कि आपका 10 साल का बेटा है, क्या सपने हैं आपके मन में उसके लिए, क्या सपना देखती हैं?
0: बेटे को मैंने 2 साल का हो गया था तो मैं उसके स्कूल में गई, किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे प्ले वे स्कूल है तो उसको वहाँ डाल दे तो तेरा बच्चा बैठना सीख जाएगा, सरकारी स्कूल है। मैडम से बात की कि इसको 2 साल के बच्चे को स्कूल ले लो, तो बोली कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो इसको स्कूल नहीं रख सकते, आप इसको थोड़ा 2.5 साल का हो जाएगा तब भेजना। नहीं, मुझे था कि मैं इसको स्कूल में डालना है तो डालना, मुझे मेरा बचपना याद आता था। सच में सर, मैं नहीं पढ़ी, मुझे बहुत दुख लगता है, हैरान होते कि 2 साल के लड़के को छोटा सा बच्चा स्कूल डालने आ गई है, तो और 1 साल, मतलब 3 साल का होने दे तब डाल देना। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी डालना है, इसको अभी बिठाना है। तो बोली ऐसा क्यों जिद कर रही है? मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी डालूंगी तो मुझे इसको आगे पढ़ना की आदत पड़ जाएगी, बैठने की आदत पड़ जाएगी, कुछ करने का इसको भी शौक लगेगा। मेरा भी शौक नहीं है तो मैं चाहती हूँ मेरे बेटे पे सारा जोर लग जाए, जो मैं नहीं पढ़ी हूँ मेरा बेटा ही पढ़े जाए। मुझे जब अपना बचपना याद आता था, मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसको जल्दी से स्कूल में डाल देना ताकि इसका स्कूल देख लूंगी मैं किसी बहाने की, इसको कैसे कराते बस। तो बस उस मैडम ने मेरी 2 बातें सुनी और उसने कहा चल ठीक है, तो इसको ना 1 घंटा 2 घंटे बिठा दिया कर।
1: क्या बनाना चाहती हैं बेटे को?
0: बनाने को सर, वो तो कह रहा है कि मैं ऑफिसर बनूंगा, तो मैंने कहा तू कुछ भी बन जा, मेरे जैसे धक्के मत खाना, मेरे जैसे अनपढ़ गवाह मत रहना, तू पढ़ बस। तो वो पढ़ता है, आज 5वीं क्लास में है वो, उसकी खुद की चॉइस है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, और मुझे ये कि ऑफिसर बने चाहे डॉक्टर बने चाहे कुछ भी बने, बस पढ़ ले, जो मेरे पास जिंदगी में कमी है वो कमी वो पूरी करे।
1: जी बिल्कुल, और आपकी इतनी हिम्मत है आज, क्योंकि बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत सी महिलाएं सुन रही होंगी ये कार्यक्रम, तो आप चलते चलते उन सबको, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से?
0: मैं तो यही कहूंगी, अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए, आगे जितना चलो जितना पढ़ो वही तुम्हारा है बस।
1: जी बलजिंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी हमारे श्रोता, खास तौर पर महिलाएं जो ये कार्यक्रम सुन रही हैं, वो जरूर आपसे प्रेरणा लेंगी और जिंदगी को किस तरह से हिम्मत और जज्बे के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ जिया जाता है वो आपसे जरूर सीख लेंगी। बलजिंदर, आप

0: आपने स्टूडियो में आई, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ आपने साझी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी सर।
0: दोस्तों, आज यादों का कारवा में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में ट्राइसिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। यादों का कारवा श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। अभी आप सुन रहे थे श्रृंखला यादों का कारवां, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में हम पेश करेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नीचे प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
3: क्या मैं बोलूं?
4: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं और आज जिन फिल्मों के गीत आप सुन सकते हैं वो फिल्में हैं आंधी, अनजाना, धर्मवीर, लोफर और महबूबा। अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें टेलीफोन करें। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172 और फिल्में एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, महबूबा, लोफर, धर्मवीर, अनजाना और आंधी। श्रोता ऑनलाइन है, बात करके देखते हैं पहले किन श्रोता की कॉल जो है वो लगती है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार।
5: सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी की ओर से रमेश कपूर भाईजान को प्यार भरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी गुलाटी साहब, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया कपूर साहब, अभी अभी यादों का कारवां सुना
0: जी,
5: तो पूरा तो नहीं सुन पाया मैंने, कुछ 5 मिनट का प्रोग्राम सुना और बहुत अच्छा लगा भी। ऐसी महिला को हमारा सलाम है
0: जी,
5: मतलब
0: बिल्कुल,
5: इतनी मेहनत करके एक अलग सा उदाहरण उन्होंने पेश किया है, आई सल्यूट सर।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए महिलाएं हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं, है ना, इनके बिना इस संसार की, समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। तो गुलाटी साहब, कौन सी फिल्म का
5: प्रोग्राम
0: जी, शुक्रिया, कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनवाएं?
5: लोफर फिल्म का सुना दो सर, कोई शहरी बाबू कोई लहरी बाबू
0: जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर लोफर फिल्म का गीत।
5: ग्रेट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं आंधी, अनजाना, धर्मवीर और महबूबा। इन फिल्मों में से अपनी पसंद का फिल्म गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, हेलो सिटी ब्यूटीफुल, मैं योगेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: बहुत बढ़िया है। और आज शिमला का मौसम कैसा है?
1: शिमला का मौसम तो अभी सुहावना बना हुआ है और सुबह से ही बारिश चली हुई थी, रिमझिम बरस रहा था पानी, और अभी तो मौसम साफ है, अभी धूप खिली हुई है।
0: अच्छा, तो शिमला में कहाँ पे रहते हैं?
1: जी मैं शिमला में ही रहता हूँ, प्रॉपर शिमला में।
0: प्रॉपर शिमला में?
1: एक्चुअली मैं शिमला का नहीं हूँ, मैं मंडी का हूँ, शिमला में रहता हूँ।
0: अच्छा
1: जी, मैं मंडी जिले से बिलोंग करता हूँ।
0: तो यहाँ नौकरी के सिलसिले में है या काम के सिलसिले में आए हैं?
1: जी पढ़ाई के सिलसिले में है, मैं यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED कर रहा हूँ।
0: जी जी जी
1: जी।
0: चलिए योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: जी आप अनजाना फिल्म का गीत सुना दीजिए, रिम जिम के गीत, ये वाला गाना।
0: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन।

0: हफ्ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तें लागू।
1: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार जी, सर मोहनलाल नागपाल बोल रहा हूँ, बरवाला से।
1: जी मोहनलाल नागपाल जी, कैसे हैं आप?
2: सर आपका आशीर्वाद है, आपके प्यार से बहुत अच्छे थे जी।
1: तो
2: बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है।
1: जी जी जी बिल्कुल
2: जी।
1: तो मोहनलाल नागपाल जी, प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको?
2: सर बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके, बहुत अच्छे हिट प्रोग्राम आ रहे हैं, आपको दिल छूने वाले प्रोग्राम आते हैं, और जो आप प्रस्तुत करते हैं वो तो और भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको तो चार चांद लग जाते हैं।
1: तो आज आपने वो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में सुना होगा कार्यक्रम?
2: जी सर, हाँ जी सर, वो टैक्सी ड्राइवर वाला जी,
1: ट्राई सिटी की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर श्रीमती बलजिंदर कौर की कहानी थी उसमें।
2: हाँ जी हाँ जी, देखो कितना उसने संघर्ष किया जिंदगी में अपने में, और अभी भी कर रही है। ऐसे बच्चों को सलूट है, प्रणाम है, आशीर्वाद है।
1: बिल्कुल, ऐसी महिलाएं दूसरों के लिए भी जो है वो प्रेरणा है
2: जी सर,
1: जो जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे मुश्किलें हजार उनके रास्ते में आ रही हैं,
2: है ना? उन्होंने कोई परवाह नहीं की अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल,
2: और तो अपने बच्चों को सब कुछ निछावर करके पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से भी।
1: चलिए इसी तरह से आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम सुनते रहिए। तो बताइए कौन सा गाना, कौन सी फिल्म का आपको सुनवाएं?
2: सर धर्मवीर का कोई भी गाना सुना दो जी।
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं ये गीत
2: जी सर,
1: धर्मवीर फिल्म से।
2: धन्यवाद।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सुनील बोल रहा हूँ बद्दी से।
0: हेलो,
1: अच्छा सुनील कुमार बोल रहा हूँ बद्दी से।
0: आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा या तो कमरे से बाहर आ जाइए या यहाँ पे नेटवर्क है वहां पे आ जाइए।
1: हाँ जी सर, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ बद्दी से।
0: जी सुनील कुमार जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं सर, मैं आपके कार्यक्रम सुनता हूँ। संडे को सुनता, बाकी दिन तो मैं वर्किंग होता ना, ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा,
1: और संडे को मौका मिलता है तो आपके पूरे कार्यक्रम सुनते हैं, और जिस अंदाज से आप बोलते हैं वो तो लाजवाब है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार जी। गाना कौन सा सुनवाएं, कौन सी फिल्म का
1: गाना? अभी आपके पास एक चिरांदी बची है और उसका गाना सुना दो जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे मेरी तो चॉइस होगा कि जिस मोड़ पे जाते हो, बट अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है सुना
0: दो। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं मोहित कांखल बोल रहा हूँ, पंजाब से।
0: जी मोहित जी, पंजाब में कहाँ से बोल रहे हैं?
1: पंजाब में डिस्ट्रिक्ट संगरूर सिटी खनौरी जी।
0: जी
1: तो सर, जो आप कह रहे थे महबूबा फिल्म का एक गाना बचा
0: है, महबूबा फिल्म का जी,
1: फिल्म में तो ये गाना भी तो है, पर्वत के पीछे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर महबूबा फिल्म का ये गीत।
1: ठीक है, थैंक यू सर।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बोल दिया.
2: क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम. हेलो सिटी ब्यूटीफुल.
0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर. ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र. 12 बजने वाले हैं. थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे.
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा. संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं. बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया. मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है. मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है. इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है. संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई. यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी. किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी. यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी. वे मॉल्दोवा की संसद

0: के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज की बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
4: हो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार।

0: और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओ, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना, उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता।

जयदेव का स्वर्गदुखिया ये गीत आपने सुना। नीरज का लिखा, आशा भोसले और सिखियों की आवाजें थी। रेशमा और शीरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और इस गीत के पहले श्रोताओ, नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे।

शंकर किशन की बनाई धुन पर इस गाया मामा फिल्म कन्या दान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: फिल्म गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोता यादों की महफिल कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। ये जो सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 8 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा 3 बजे। नाट्यथान कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए यात्रा का अंत। लेखक हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशक MS बेक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में निर्देशिका, पटकथा लेखिका, पद्मभूषण और सई परांजपे से यूनस खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा।

आयोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित होगा शाम 5:20 पर। कार्यक्रम अमृतवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। आज इस कार्यक्रम में महावीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी दवैया की शौर्य गाथा पेश की जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल कार्यक्रम में केपी सक्सेना की लिखी झलकी सुनिए। लालटेन की वापसी, निर्देशक हैं महेंद्र मोदी और इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8 बजे। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ही कार्यक्रम गीतकार नीरज पर केंद्रित रहेगा और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

0: अब सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। FM 107.2 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने, वन संरक्षण को सुदृढ़ बनाने तथा पौधारोपण अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कल चंडीगढ़ में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी वन महोत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण केवल संख्या तक सीमित न रहे बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे का संरक्षण और नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा अन्य सरकारी परिसरों में पौधारोपण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर व्यापक स्तर पर पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी पौधों और पेड़ों की जियो टैगिंग कर उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिन सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पौधारोपण किया जाए वहां उसके संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध कटान पर पूरी तरह रोक लगाने और खैर, साल और शीशम जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों के पेड़ों की जियो फेंसिंग एवं नंबरिंग कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को शिक्षा सुधारों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कल चंडीगढ़ में समग्र शिक्षा योजना की बैठक में इस संबंध में तैयार कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और उद्योगोन्मुखी कौशल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों से बैठक के साथ जुड़े सभी उपायुक्तों को मुख्य सचिव ने अपने अपने जिलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने बताया कि वर्तमान में संचालित 15 व्यावसायिक क्षेत्रों के अतिरिक्त विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को उभरती प्रौद्योगिकियों

का शुरुआती ज्ञान मिलेगा और वे भविष्य में रोजगार अवसरों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल पंजाब विश्वविद्यालय की क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित भारतीय व्हीलचेयर संघ की 6वीं व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि साहस, समानता और समावेशन का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन विकसित भारत 2047 की भावना को साकार करता है। श्री कटारिया ने कहा कि व्हीलचेयर क्रिकेट यह सिद्ध करता है कि शारीरिक सीमाएं कभी भी व्यक्ति की क्षमता को परिभाषित नहीं कर सकती। उन्होंने समाज से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी अवसंरचना, शिक्षा, खेल और रोजगार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देशभर से 45 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हम तुसी चंद्रो शर्मा तो प्रतिशत खबरें सुनो। संसद के मानसून अजलास तो पहला सरकार वालों बुलाई गई सर्व पार्टी मीटिंग अज संसद कॉम्पलैक्स विच शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा च सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग च मौजूद ने। मीटिंग शुरू होने तो तुरंत बाद विरोधी पार्टियां ने विरोध जताते हुए मीटिंग चो वॉकआउट कर दिता। आने वाले मानसून अजलास दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा किए जाने पास किए जाने का प्रोग्राम है। केंद्रीय खुराक प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री और लोक जन शक्ति पार्टी राम बिलास के राष्ट्रीय प्रधान चिराग पासवान अज गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। उन्हें सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होकर सरबत के भले देश की खुशहाली और पंजाब की तरक्की लिए अरदास की। पत्रकारों ने गलबात करद चिराग पासवान ने कहा कि जदों भी वह श्री दरबार साहब मत्था टेकन आते हैं तो उन्होंने एक विलखण आत्मक शांति सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को वो अधिकार से विकास नहीं मिले जिसके वो हकदार सन।
1: हमेशा यहाँ आके माथा टेक के एक नई ऊर्जा मिलती है। पंजाब पंजाबियों को जो हक अधिकार देश विकास के साथ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पंजाब के युवाओं के भविष्य को जिस तरीके से नशे में उलझा के रख दिया, शिक्षा स्वास्थ्य पे जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामलला से एक नई सोच के साथ आती है। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता हूँ डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर, और इसके लिए संगठन लंबे समय से तैयारी कर रहा है। पर आज मैं औपचारिक तौर विधिवत तरीके से यहाँ पे माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर, उम्मीद है विश्वास है इना दे आशीर्वाद ना सिर्फ मेरे बल्कि सारे पंजाबियों के सारे सपने पूरे होंगे।
0: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कल पंजाब च नौजवान सुधार ते मुड़ सेवा मुहिम की शुरुआत की, जो नौजवानों च नशे में रुझान ठल पाने लई वड्डी सूबा पद्धरी पहलकदमी है। इस मुहिम का उद्घाटन पंजाब के हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस ते हाईकोर्ट के होरना जजां की मौजूदगी च कीता गया। पंजाब राज कानूनी सेवा

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं 1942 लव स्टोरी फिल्म का गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

0: 8667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें झूमती चली हवा तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं, ये कायनात के रास समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूं, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहंशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं, किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसके आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरे दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं, तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार

बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहां वक्त का गुजरना, चेहरों, चेहरे की झुर्रियां और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी है, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आईज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आईज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स आर एज वेल एज प्रोज हैव डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ आईज। ऑल द बेस्ट। इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आंखें कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती है, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी। अब फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर

किरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोता, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिट्टी नहीं है, वो धुंधली जरूर हो जाती है। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हो तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर है। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी गुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

0: है के सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओं, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवन नंदन पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजनू सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती है, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती है, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती है, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान से वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज़्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त, वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मधोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज खींची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितनी भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

12 जी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, अखबार बाराबंकी के बोल थे शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक बार श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई है, कुछ खराब हो गई है, तो पेंटिंग जो है मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश कलर बोर्ड बहुत खरीद कर दिए, अब वो नहीं है और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आए और उसके लिए जो चीजें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है, उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की काली घटाओं की रात में चांद की तारामंडल की सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त नदियां तालाब झील पर्वत देवदार और वृक्ष पक्षी ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जीवन परिवार के संबंधियों यात्रा प्रकृति सभी की है तस्वीरें, और नाना नानी दादा दादी जी माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी है। तो तस्वीरों की यादों को ताजा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यही संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही

0: सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र

0: ईमेल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए

0: जो बन गई मोती, सुनकर दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन,
4: वो तेरे प्यार का।
3: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन,
4: मुबारक हो सबको समाये
3: सोहा। विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
3: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ਜਨ ਓ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਓ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਓ ਰੱਬਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਖੈਰ ਓ ਰੱਬਾ

0: आप सुन रहे थे लाट साहब फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओं सदाबहार में हमें कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यही संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।

0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
1: मुबारक हो सबको समय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
2: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हूँ आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधली, आरती जोंधली की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाह जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वारोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मुईन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।
1: बता तू क्या लाना, कल लौट के आ जाना, ये छोट

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के गुलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावल करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह सुन में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लवण्या, महसिवन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लूफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी आर्य बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद, अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट के पंजाब से सतीश मिदलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यही संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बना ही देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब।
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ।
2: नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
1: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
2: क्यों
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
2: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: यही तो नहीं मालूम

0: क्या कह रहे हैं आप?
1: सच ही तो कह रहा हूं भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, बस चला जा रहा हूं।

0: को भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
1: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
0: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
1: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
0: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
1: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया। तू ही क्या करते?
0: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: तुम क्या कहोगे राजेश, अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों की बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
0: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
1: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
0: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
1: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
0: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
1: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
0: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
1: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
0: और कोई ऐसे रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
1: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
0: फिर कहाँ गए होंगे?
1: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
0: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
1: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
0: गलती तो जरूर हुई है माँ।
1: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
0: ऐसा ना कहो माँ।
1: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
0: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
1: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
1: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
0: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
1: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
0: अपनी ओर से तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
1: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी थिरती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
0: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
1: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं

0: इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम ही बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ।
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी ही आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ। काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगा कर करेंगे। या और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोज कर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये शिकायत क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सब रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
3: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
3: हाँ मिल गया है।
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे, कैसे गए वहां से?
3: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण घर छोड़कर चले गए?
3: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं भाई।
3: तुम सब समझते

0: मैं कुछ नहीं समझता भैया। तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती। मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है। नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
0: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
0: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
0: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
0: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आप तुमने क्या बातें हुई?
0: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
0: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
0: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
0: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
0: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही उन रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
0: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूं मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
0: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
0: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
0: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
0: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
0: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूं। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
0: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूं।
0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना, अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा, पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया?

0: अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
1: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
0: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
1: यसे मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
0: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
1: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
0: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
1: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
0: इतना आसान है बेटे?
1: है कि नहीं?
0: इतने रुपए लगेंगे?
1: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
0: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
1: मैंने नरेश से बातें की है।
0: क्या कहता है वो?
1: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
0: और उससे कुछ ना हो सका तब?
1: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
0: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
1: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
0: कौन करेगा इतना खर्च?
1: क्यों, मैं करूँगा।
0: सचमुच?
1: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
0: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
1: हाँ सोच ही लिया है।
0: और बहू से पूछा है तुमने?
1: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
0: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
1: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
0: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
1: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
0: सोचना क्या है?
1: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
0: कैसी इच्छा?
1: कृष्णा की शादी की।
0: हाँ शादी तो करनी ही है।
1: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
0: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
1: हाँ रुपए तो लगेंगे।
0: आएंगे कहाँ से?
1: उपाय करना पड़ेगा।
0: क्या उपाय करेंगे आप?
1: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
0: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
1: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
0: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
1: तो दूसरा कौन करेगा?
0: अमरीश,
1: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
0: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब तुम्हें भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
1: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेवारी ना समझे तब?
0: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
1: और यदि वो समझने से इनकार कर दे
0: तब? परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
1: और क्या सोचना पड़ेगा?
0: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओहो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे, हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
0: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें? अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया, भैया, भैया, क्या हो गया भैया?
1: क्या
2: हो गया?
1: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्कर देखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।
1: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
3: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट

हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई, लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ, अब मुझसे ये जिंदगी

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भी मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुने है।
1: नहीं, माँ मरना सुने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती?

0: Alguien me usted hasta aquí. Me usted hasta aquí.
1: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे लग रहा
1: नाता है?
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए
1: जी।
2: और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे, सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी वह, ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो तुम, मैं रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानी? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में

0: खैर तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए किशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
0: लेकिन मुझे लगता है यूनुस उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी, हाँ,
0: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
0: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते, मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की, 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे
1: जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है, तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओह डियर, चलो मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए, वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने या मराठी में कुंकू, हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ, लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी बाको कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांगर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो

0: उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ,
1: मछुआरी
0: मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकनिम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाडा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो। और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे अंदाज है उनकी वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई। और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की की पढ़ा। और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: हाँ,
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं। और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, बड़ा प्यारा।
0: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं, कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसीबाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे, हाँ, दोनों। और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह,
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, ये तो इतनी भव्यता के साथ शादी की गई
0: जी। और मेरी

0: अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना की बात लेकिन है। ये वाला जिक्र आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों नहीं,
1: फिल्म में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा।
0: क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा। बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को
1: या
0: पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन,
0: हाँ
1: स्कॉट और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स
1: वेदरिंग
0: वगैरह।
1: हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां

0: बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
1: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ और वो है अच्युत रानाडे साहब।
0: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी, बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ानी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे
1: जी।
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन तो, शैली का,
0: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
1: बड़ा मजेदार है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैसलाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सिंगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी। और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता, और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: हाँ,
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर
0: गाने
1: जी,
0: वाले हाँ? तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरे तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है? और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा रही है, और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब, गजब, गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण

0: घटना है कि अचित मामा है वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
1: जी, देखो, वो साथ साथ होता रहा है,
0: के सुनाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
1: हाँ।
0: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
1: वो इत्तेफाक की बात है
0: जी।
1: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हा? और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता। लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकनियम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांच्या गडगडाटा सह विजांचा कडकडाट होईल।
0: हाँ,
1: अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
0: जी।
1: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट, और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म,
0: पूरा याद है, शिव तांडव स्तोत्र
1: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
0: होते
1: हैं, वो करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग, तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
0: जी।
1: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए, और
0: वाह।
1: मैं

0: बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए, बहुत खुश हुई। और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: वाह, कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं, ऐसा कहते हैं, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो, तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो हाँ। बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम, और बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरबा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगोल करके घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना। हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
1: बेचारी
0: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी,
0: हाँ,
1: गदी माडगुलकर, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात,

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक नाटक लिखती हूँ, तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहता है, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है हर एक के ऊपर, लिखता है मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: की सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चशा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह।
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और

0: पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और बान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला आदम का ये वो, और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे। एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माय स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ों की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखी,
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते हाँ, से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुस्टंडे बिचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं, हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
0: कहानी चल रही है। कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद?
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

चकित भय सगरे नगरे बदला काली घोड़े दौड़ पड़ी।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन

0: वो तब की बात है ना, इसलिए
1: जी।
0: तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया। लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
1: तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
0: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
1: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कह सकते? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रन थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया पधारा एसडी में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात है।
0: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब सात जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर। बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
0: नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए
0: जी, जी।
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती
0: है, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ करा, उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया। हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी, बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वाज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका, वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दनी। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो।

0: एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलका जी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की वी पूरी बदल दी अलका जी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

102 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सभा नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जंजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने

0: इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: 8667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में झुक गया आसमां फिल्म का गीत।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program and this is your RJ Chetan. आज हमारा लम्हे प्रोग्राम का टॉपिक है सेफ्टी हैबिट्स फॉर किड्स, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल जाते समय तथा दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने हेतु वो कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम्स या टिप्स है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। माता पिता हमेशा ध्यान देने की सेफ्टी हैबिट्स फॉर किड्स के लिए प्रयास करते रहे जो आपके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करे। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद चेतन।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आजकल बच्चों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चों को सही सही सड़क पर चलना नहीं आ रहा है और बच्चे अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी के ऊपर बिना सोचे समझे विश्वास कर रहे हैं, इससे बच्चों को काफी बड़ी तकलीफ हो सकती है। माता पिता को स्वयं ये ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों को किस तरह से हर तरह की समस्या का समाधान करना होगा। सुरक्षा के मामले में पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान है या नहीं, इस बात की जानकारी हमेशा रखनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाना होता है। बच्चे किस तरह से हर किसी के ऊपर बिना कोई विचार किए यकीन कर लेते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। हमें अपने बच्चों को हेल्थी आदतें तथा अच्छा शारीरिक ज्ञान तथा शारीरिक संरचना आदि के ऊपर उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें जरूरी जानकारी देनी चाहिए, जिससे वो आने वाले खतरों का सामना खुद कर सकते हैं। बच्चों को अपने आसपास हो रही प्रत्येक क्रिया को अच्छे से समझाना चाहिए। जो व्यक्ति बच्चों की पहचान का नहीं है, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो ऐसे व्यक्तियों से दूर बनाकर रखिए। ऐसे बच्चे से भी दूरी बनाकर रखें जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं तथा दूसरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं। बच्चे जहां पर भी अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने जाते हैं तो वह हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि वो किसी अनजान बच्चे के साथ नहीं जाए, चाहे वो टॉयलेट जाए या कहीं खेलने कूदने जाए। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा किसी अनजान के साथ नहीं घूमना चाहिए। यदि बच्चा किसी अजनबी के साथ चला जाता है तो बच्चों को जोर जोर से चिल्लाना चाहिए जब तक कोई मदद के लिए नहीं आए। बच्चा चिल्लाता रहना चाहिए, जिससे आपके आसपास कोई होगा तो आपको बचा लेगा। बच्चे की सिक्स सेंस सक्रिय करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे मासूम होने की वजह से अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाते हैं एवं किसी खतरे में भी फंस सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की यदि छठी इंद्री सक्रिय हो गई तो बच्चे किसी अनहोनी के संकेत से ही भाग जाएंगे और बच्चा खतरे से बच सकता है। बच्चे का शरीर स्वतः ही उसे ये सूचना दे देगी कि यहाँ कोई खतरा हो सकता है, जिसे बच्चा सक्रिय हो जाता है। स्कूल के अंदर हमेशा ये ध्यान दे कि यदि आपको कोई खतरा नजर आता है तो आप हमेशा CCTV की नजर में रहे, जिससे आपकी हर संभव सहायता की जा सकती है। तथा यदि आपके स्कूल में सुरक्षा बल तैनात है

तो आप उनके पास रहिए, जिससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। लड़कों तथा लड़कियों के बाथरूम दूर दूर होने चाहिए, जिससे लड़कियों को कोई दिक्कत न हो। विद्यालयों के अंदर ऐसी सुविधाएं जरूर होनी चाहिए जिससे बच्चों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हो। स्कूल में हर जगह पर CCTV की सुविधा होनी चाहिए। क्लासरूम, प्लेग्राउंड, मैदान आदि में कैमरा की सुविधा होनी चाहिए जिससे बच्चों पर अच्छी तरह से निगरानी हो। स्कूल या कॉलेज प्रेमिसेस में कोई अनजान व्यक्ति को अनुमति नहीं देना चाहिए। बिना किसी इजाजत का कोई भी स्कूल के परिसर में नहीं आना चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चों के अभिभावक तथा अन्य कोई भी आए तो उसकी एंट्री होनी चाहिए कि वो कब विद्यालय के अंदर आया, कब बाहर गया, इस बात का पूरा विवरण होना चाहिए, जिससे यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे ठीक से सुलझाया जा सकता है। बच्चों को जो भी स्कूल छोड़ने हेतु आते हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन स्कूल के पास होना चाहिए, जिससे बाहर के लोग जैसे टैक्सी वाले, बस ड्राइवर आदि की जानकारी स्कूल को रखनी चाहिए। यदि स्कूल में कोई घातक हथियार लेकर आता है तो इसकी सूचना स्कूल मैनेजमेंट को देनी चाहिए।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। बच्चे यदि सड़क पर जाते हैं तो भी बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को ये बताएं कि सड़क पर कैसा चलना चाहिए। सड़क पार करते समय ध्यान दे कि कोई भी वाहन आ नहीं रहा हो जिससे बाधा हो। कभी कभी बच्चों के सड़क हादसे हो जाते हैं जिसके जिम्मेदार माता पिता भी होते हैं। वो अपने बच्चों को बिना सोचे समझे सड़क पर भेज देते हैं जिससे अनेक तरह के हादसे के बच्चे शिकार हो जाते हैं। बच्चों की देखभाल करने के लिए पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते। खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए माता पिता से लेकर घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बच्चों के साथ ही रहता है। हालांकि कई बार माता पिता को कुछ जरूरी काम के कारण घर से बाहर भी जाना पड़ जाता है। ऐसे में बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना कुछ पेरेंट्स के लिए चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो बच्चों को कुछ सेफ्टी टिप्स सिखाकर घर में न रहते हुए भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सेफ्टी टिप्स फॉर किड्स। विद दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरे प्यार भरे नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं धर्मात्मा फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है बॉबी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये गीत है राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म है जूली।

अब सुनते हैं डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने, गीत की बोल लिखी है आनंद बख्शी ने।

ये गीत अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत था खयाम का, गीत के बोल लिखे थे कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म है अमर अकबर एंथनी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

ये गीत अभी आपने सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से। इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTEC, MTEC और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोते, हम सुन रहे हैं एक गैर फिल्मी गीत अंकित तिवारी दी आवाज़ में।

0: नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से सभी जिला उपायुक्तों व विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग का स्कूल एक्रीडिटेशन हरियाणा पोर्टल जारी किया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में 20 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 20 से 22 जुलाई तक हरियाणा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। आज इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: श्री रिजिजू ने कहा कि यह बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सभी जिला उपायुक्तों व विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी उनके साथ मौजूद रहे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने मॉनसून सीजन के दौरान पौधे लगाने, स्वच्छता और नशा मुक्ति पर केंद्रित गतिविधियों पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शिक्षा विभाग का स्कूल एक्रीडिटेशन हरियाणा पोर्टल भी जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद में हिसार के गंगवा गांव के पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, जिला शिक्षा अधिकारी रामरतन, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों व अभिभावकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के साथ संवाद में स्कूल के प्रिंसिपल जय भगवान ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्कूल की खेल प्रतिभाओं के बारे में भी जानकारी ली व स्कूल की प्रशंसा की। जिला शिक्षा अधिकारी रामरतन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, स्वच्छता और नशा मुक्ति पर काम करने पर बल दिया।
2: आज मुख्यमंत्री ने बड़ा डिटेल में एसएमसी के सदस्यों से और प्राचार्य से और जिला प्रशासन से बात की। मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश दिए कि सभी मिलकर के काम करेंगे, जिसमें अभी क्योंकि रेनी सीजन है, पौधारोपण पर विशेष जोर दिया जाए, स्वच्छता पर और नशा मुक्ति पर और बच्चों के विकास के लिए, खेल के लिए सब एसएमसी जो है पूर्णतः भागीदार हर बात में रहे, ये पहली बार ऐसा होगा और ऐसा संवाद जो है समय समय पर होता रहे और मतलब किसी प्रकार की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की जो खामियां है या किसी तरह की मतलब आ रही है तो हम उसको मतलब दूर किया जाए। कुछ मांगे रखी गई, जैसे मतलब यहाँ हमारे गंगवा में 2000 बचे हैं और यहाँ ऑडिटोरियम की जरूरत है।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। यह खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर

750 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने चेन यूफेई को हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट दर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली दो तिमाहियों के दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान संबंधी दिशा निर्देशों के तहत 12,865 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने के साथ हरियाणा तंबाकू नियंत्रण में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रतियोगियाओं की संख्या के मामले में भी देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो व्यापक जनभागीदारी और मजबूत अंतर्विभागीय तालमेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में भी तेजी से प्रगति कर रही है, जिसके तहत 1,128 गांवों के पहले ही तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन करते हुए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोटपा 2003 की धारा 4 के तहत 3,848 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए गए, जिससे जुर्माने के रूप में 1,82,000 रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा प्रवर्तन एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत 6 मामले दर्ज किए और 33 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का स्टॉक जब्त किया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 20 से 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 20, 22 और 23 जुलाई तक कई जगहों पर और 21 जुलाई को ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि आज 24 और 25 तारीख को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार हरियाणा में 20 से 22 तारीख के बीच कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की फरीदाबाद यूनिट ने एक नशा तस्कर को 13 ग्राम 24 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पलवल के गांव बड़ौली निवासी नीरज उर्फ नीरा के रूप में हुई है। फरीदाबाद यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी को काबू किया और उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फरीदाबाद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान अंतिम चरण में है। मतदाता सूची के अद्यतन एवं शुद्धिकरण के लिए गणना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 24 जुलाई निर्धारित की गई है। फरीदाबाद जिले के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को जमा कराएं। 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से सभी जिला उपायुक्तों व विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग का स्कूल एक्रीडिटेशन हरियाणा पोर्टल जारी किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आई केंद्र है, जानकार बनो, सचेत रहो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। संसद का मानसून इजलास कल तो शुरू, अगले महीने की 13 तरीक तक जारी रहेगा। पंजाब भर में गणना फार्म भरन ते जमा करवाउण लई अज सारे वोट केंद्रां ते इकलौता SIR विशेष कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जलंधर च होने वाली राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप दीआं तैयारियां दा लिया जायजा। रायजादा हंसराज स्टेडियम विखे अत आधुनिक इनडोर बैडमिंटन हॉल लई 2,14,00,000 रुपए दा कीता ऐलान। पंजाब विच झोने दी सीधी बिजाई अधीन रकबा 36% वाधे नाल 4,00,000 एकड़ तो पार होया। फाजिलका ते श्री मुकतसर साहब सूबे भर विचों मोरी। मौसम विभाग वल्लों कल 20 तो 22 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी तो बेहद भारी मीह पैण बारे ओरेंज अलर्ट जारी। दो बार की ओलंपिक तमगा जेतू PV सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जितया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। तीन खबरां विस्तार नाल। संसद का मानसून इजलास कल तो शुरू हो रहा है। इजलास तो पहला सरकार ने आज संसद भवन विच एक सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई। इसकी प्रधानगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय मामलों बारे राज्यमंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ते डॉ एल मुरगन भी इस मीटिंग च मौजूद रहे। पत्रकारों नाल गलबात करदिया श्री रिजिजू ने सारिया राजनीतिक पार्टियां नूं संसद के सुचारू कामकाज ते महत्वपूर्ण मुद्दों ते सकारात्मक चर्चा नूं यकीनी बनाउण दी अपील की।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संसद के मानसून अजलास में कई महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों पर चर्चा होने और पास होने की उम्मीद है। केंद्रीय खुराक प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रधान चिराग पासवान अज गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक हो गए। सरबत के भले, देश की खुशहाली और पंजाब की तरक्की लिए अरदास की। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिया चिराग पासवान ने कहा कि जदों भी वह श्री दरबार साहब मत्था टेकन आउंदे ने तां उन्हां नूं एक विलक्षण आत्मिक शक्ति ते सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होंगी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने अधिकार के विकास नहीं मिला जिसके वह हकदार सन। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या ते सेहत के खेत्र में उम्मीदा मुताबक काम नहीं हुआ जबकि नौजवानों ने नशे वर्गी गंभीर समस्या में उलझा के रखा गया। पंजाब के मुख्य चुनाव अफसर अनंतता मित्रा दी हिदायतों मुताबक वोटर सूचियां की चल रही विशेष तीबर सोध SIR तहत गणना फार्म भरन एकत्र करन ते डिजिटाइजेशन के काम च तेजी लियाउण लई अज सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते विशेष कैंप लगाए गए। बूथ लैवल अफसरां ने आपो अपने पोलिंग बूथां ते वोटरां नूं गणना फार्म भरन ते जमा करवाउण विच लोड़ीदी मदद प्रदान की। इस तहत अज जलंधर जिले के सारे 1926 पोलिंग बूथां ते भी विशेष कैंप लगाए गए। जिला चोण अफसर वरजीत वालिया ने कहा कि जिले भर में लगे इन्हां विशेष कैंपां च वड्डी गिणती योग वोटरां ने अपनी गणना फार्म भर के जमा करवाए। जिन्हां बूथां ते डिजिटाइजेशन का काम अजे बाकी सी उत्थे फार्मां दी डिजिटाइजेशन ते एकत्रता का काम तेजी नाल कीता गया जबकि होरनां बूथां ते दस्तावेजां दी जांच अते खामियां दूर करन दा काम जारी रहा। उन्होंने दस्या कि SIR दे सोधे हुए प्रोग्राम मुताबक घर घर सर्वेखण ते गणना फार्म एकत्र करन दा काम 3 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साल दसंबर च जलंधर के इतिहासक रायजादा हंसराज स्टेडियम विखे होने वाली सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप तैयारियों का अज जायजा लिया। इस मौके मुख्यमंत्री ने एक अत आधुनिक इनडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण वास्ते 2,14,00,000 रुपए की विशेष ग्रांट का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 44 साल बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप इतिहासक रायजादा हंसराज स्टेडियम च वापस आ रही है। यह चैंपियनशिप पंजाब च बैडमिंटन नूं उत्साहित करेगी ते सूबे विच खेड सभ्याचार नूं होर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने नवे इनडोर बैडमिंटन हॉल की उसारी वास्ते डिप्टी कमिश्नर वरजीत सिंह वालिया ते पंजाब बैडमिंटन एसोसीएशन के सकत्तर रितिन खन्ना नूं 2,14,00,000 रुपए की प्रवानगी का चंक सौंपया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग इस प्रोजेक्ट नूं लागू करेगा ते टेंडर प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। यह खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विखे बीते कल शुरू हुई 2 रोजा 6वीं व्हीलचेयर क्रिकेट चैंप

0: चैंपियनशिप 2026 आज समाप्त हो गई। पंजाब के राज्यपाल के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बीते दिन चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड विखे व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत मौके मुख मेहमान वजो शिरकत की। इस मौके संबोधन करद उन्होंने कहा कि यह चैंपियनशिप सिर्फ एक खेल मुकाबला ही नहीं सगो हिम्मत समानता शमूलियत का भी जश्न है। एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं प्रशासक ने कहा कि खेडां राहीं समावेशी भारत पायदार भविख लई दिव्यांग व्यक्तियों की समर्था निर्माण ते लीडरशिप विकास ते दो रोजा चैंपियनशिप ने देश भर के 45 दिव्यांग अथलीटां ते नौजवान आगुआं नूं इकट्ठा कीता ते विकसित भारत 2047 दे दृष्टिकोण नूं दर्शाया है। उन्होंने समाज में दिव्यांग व्यक्तियों लई समावेशी बुनियादी ढांचा सिक्ख्या खेडां ते रुजगार यकीनी बनाउण दा सद्दा दित्ता। इस दो रोजा चैंपियनशिप विच पंजाब उत्तर प्रदेश ते छत्तीसगढ़ दीआं टीमां ने हिस्सा लिया सी। धरती हेठले पानी के डिग रहे पद्धर नूं रोकण लई कीते जा रहे उपरालियां सदका पंजाब ने इस साल सौणी सीजन दौरान 4 लाख एकड़ तों वध रकबा झोने की सीधी बिजाई तहत लिया के मिसाली वाधे का रिकॉर्ड बनाया। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने अज चंडीगढ़ विच दस्या कि रकबा पिछले साल नालों 36% वध बंद है। मंत्री ने कहा कि इस सौणी सीजन विच 31,478 रजिस्टर्ड किसानों ने 4 लाख एकड़ तों वध रकबे च झोने की सीधी बिजाई की है। सूबा सरकार ने झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानों नूं प्रति एकड़ 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दिती है। मंत्री ने दसिया कि फाजिलका जिला 12,063 किसानों वालों 1,55,422 एकड़ रकबे झोने की सीधी बिजाई नाल पंजाब भर चो मोहरी रहे। इस तों बाद श्री मुकतसर साहब दूजे फिरोजपुर तीजे स्थान पर रहे। बठिंडा ते संगरूर भी सिखरले 5 जिलों में शुमार हुए ने। पंजाब सरकार ने आम लोगों की सहूलत लई जमीन ते जायदाद की खरीद बेच समय रजिस्ट्रेशन की भाषा नूं होर सौखा बनाउण लई एक अहम कदम चुक्या। सरकार ने माल विभाग विच मुद्दतां तों वरते जांदे 35 औखे शब्दां दी थां सौखे ते आम लोगों की समझ विच आउण वाले पंजाबी शब्द वरतण दा फैसला कीता है। पंजाब दे माल मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि सरकार दा उद्देश सरकारी सेवावां नूं लोगों लई वधेरे सरल पारदर्शी ते सुखाला बनाउण है। उन्होंने दस्या कि जायदाद ते रजिस्ट्रेशन नाल संबंधित दस्तावेजां च वरती जांदी सौखी भाषा कारण आम लोगों नूं अक्सर मुश्किलां सामना करना पैंदा जिस कारण यह फैसला किया गया है। सरकार वालों चालू वित्तीय साल 2026-27 दौरान बुढ़ापा पेंशन योजना तहत 1,423.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दसिया कि सूबे भर में करीब 23,70,000 सीनियर नागरिक बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी के पुंछ में आज सवेरे भारी मीह कारण जमीन खिसकन करके अचानक हड़ आने नाल घटो घट 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 होर लापता ने। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत कई सूबों में भारी तो बेहद भारी मीह पैण की पेशीनगोई की है। इस दौरान पंजाब च वध तों वध तापमान 40.8 डिग्री सैलसीयस हरियाणा के रोहतक 40.3 डिग्री सैलसीयस ते चंडीगढ़ 36 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। दो बार की ओलंपिक तमगा जेतू पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। ओए खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिडारी बन गए ने। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची नूं सीधे सैटा विच 21-17 नाल हराया। इस तों पहले उन्होंने 2024 सीड मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जितया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन खिडारन पीवी सिंधु नूं जापान ओपन 2026 च महिला सिंगल्स खिताब जितने ते बधाई दिती है। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तों संसद दा मानसून इजलास कल तों शुरू अगले महीने की 13 तरीक तक रहेगा जारी। पंजाब भर में गणना फार्म भरन ते जमा करवाउण लई अज सारे वोट केंद्रां ते एक रोजा SIR विशेष कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जलंधर विच होण वाली राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप दीआं तैयारियां का लिया जायजा। पंजाब च झोने की सीधी बिजाई अधीन रकबा 36% वाधे 4 लाख एकड़ तो पार फाजिलका और श्री मुकतसर साहब सूबे भर विचों मोरी। मौसम विभाग वालों कल 20 तों 22 जुलाई तक पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों च भारी तो बेहद भारी मीह पैण संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी। दो बार ओलंपिक तमगा जेतू पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जितया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने खिताब जीतते बधाई दी। इस प्रतिशत खबरें खत्म हुई। राष्ट्रीय खबरों का अगला बुलेटिन सुनेंगे शाम 7:30। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ।

0: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रुति प्रोग्राम विशेष जयमाला।

फौजी साथियों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, आज हम शौर्य गाथा के नायक देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की अदम्य वीरता की शौर्य गाथा से परिचित होंगे।

न जाने कितने वीर सपूतों की शौर्यता की कहानी हम सुनते आए हैं। आज भी जब हम किसी फौजी सैनिकों के किस्से पढ़ते हैं, बस एक कल्पना में खो जाते हैं, कैसा होता होगा उनका जीवन, देश के प्रति उनका अथाह प्रेम कब दिल में जागा होगा, कौन सा पल होगा जब उन्होंने देश सेवा में अपना संपूर्ण जीवन सौंपने का संकल्प लिया होगा, किस उद्घोष ने उनके मन में देश प्रेम की लौ जलाई होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ऐसे जोश से भरे

उद्घोष सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब बात हमारे जाबाज फौजी सैनिकों की होती है तो उनके मुख से निकला नारा इतना बुलंद होता है कि जो भी सुनता है देश प्रेम, भारत माता और तिरंगे की सुरक्षा सम्मान के प्रति उसका रोम रोम जोश जज्बे से भर उठता है, जिसमें देश के प्रति जीने और कुछ कर गुजरने का हौसला, मजबूत इरादा लहू बनकर नस नस में दौड़ने लग जाता है। हम तो यही कहेंगे, हर फौजी की कहानी जब तक दोहराई जाएगी, जब तक आकाश में सूरज और चांद रहेंगे और हवाओं का सांसों में आना जाना रहेगा, धरती की गोद में शूर वीर संतानें जन्म लेती रहेंगी, ऐसे भारत माता के सपूतों को शत शत नमन करते हुए हम स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की कहानी के उन पहलुओं को जानेंगे जिससे देश गर्व से

माझी साथियों, स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया का जन्म 24 दिसंबर 1932 में कर्नाटक के कोडगु जिले, जिसे कुर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां के गांव में हुआ था। आप ऐसे परिवार में जन्मे जहां अनुशासन और सेवा भाव को प्राथमिकता दी जाती थी। अच्छे संस्कारों में पले बड़े देवैया बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे। आपके पिता डॉक्टर अजमादा बोपैया और उनकी मां नीलम्मा ने उन्हें बड़े ही प्यार से पाला। उनका गांव का शांत वातावरण, हरी भरी धरती और खुला आकाश कहीं न कहीं उनके सपनों को पंख दे रहा था। तभी तो छोटी सी उम्र, तकरीबन 21 वर्ष की आयु में, उन्होंने वो सपना सच कर दिखाया जिसकी इच्छा हर कोई करता है, लेकिन जिसके इरादे मजबूत हों वही मंजिल तक पहुंच पाता है। स्क्वाड्रन

लीडर अजमादा बी देवैया ने भारतीय वायुसेना में अपने गौरवशाली सफर की ओर कदम बढ़ा दिए। इस तरह वे सन 1954 में 64वें पायलट कोर्स के तहत कमीशन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने प्रतिष्ठित फ्लाइंग स्ट्रीम में प्रवेश किया और एक लड़ाकू पायलट के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने सारे कोर्स की विधिवत ट्रेनिंग ली और अपने आप को साबित कर दिखाया कि उनके अंदर वो जज्बा है जिससे वे हर मुकाबले का सामना कर सकते हैं।

फौजी साथियों, स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया ने अपने पूरे करियर के दौरान कई वायुसेना अड्डों पर विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड्रनों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। उनके अंदर अटूट हौसला था। वे अपने आप को निखारने का अवसर मिलते ही हवाई अभियानों में गहनता से अनुभव प्राप्त करते, जिससे उनकी पहचान भारतीय वायुसेना में एक सक्षम और सम्मानित पायलट के रूप में बनती चली गई। उनकी प्रतिभा और कुशलता ने उन्हें हर परिस्थितियों से लड़ने के योग्य बना दिया। भारतीय वायुसेना में सर्विस करते हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुंदरी और उनकी दो बेटियां हैं। वे अपने पेशेवर काम के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए एवं घर की जिम्मेदारियों को भी बाखूबी से उन्होंने निभाया। 6 नवंबर 1959 को स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पदभार संभाला। उनका प्रमोशन हो गया था। इसके तुरंत बाद उन्हें आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना में है, वहां वो एक प्रतिष्ठित वायु सेना फ्लाइंग कॉलेज में लड़ाकू विमान पायलट प्रशिक्षक के रूप में काम करने का उन्हें अवसर मिला। इतने कम समय में, यानी कह सकते

हैं कि केवल 5 वर्षों की सेवा में ही उन्हें ये अवसर मिला, जिससे वे फाइटर पायलटों की विशेष श्रेणी में दर्ज हो गए। ये उनकी अदम्य कुशलता, वीरता, समर्पण और अनुशासन का ही परिणाम था। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण हो तो ही वो इस मुकाम को हासिल कर सकता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। फौजी साथियों, उन्होंने 1965 तक एक दशक की शानदार सेवा भारतीय वायुसेना में की और स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पहुंच गए। उन्हें विभिन्न हवाई अभियानों में उनकी दक्षता और भावी पायलटों को ट्रेनिंग देने और प्रेरित करने के रूप में जाना जाने लगा। जब वे प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे, फिर भी उन्हें 1965 की लड़ाई के दौरान, जब वो लड़ाई शुरू होने वाली थी तो कुछ महीने पहले पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन में प्रथम स्क्वाड्रन के रूप में तैनात कर दिया गया। ये उनकी काबिलियत का ही परिणाम था कि वे आगे बढ़ते गए और हर पद की जिम्मेदारियों को निभाते गए। उन्हें द टाइगर्स के नाम से जाना जाता था। उनकी गिनती भारतीय वायुसेना के कुशल और निर्भीक पायलटों में होती। इसके साथ उनको हॉकी खेलने का भी शौक था। शुरू में वे वैम्पायर विमान उड़ाया करते थे। फौजी साथियों, वो घड़ी भी आ गई जिसका हर योद्धा

को इंतजार होता है। यह युद्ध था सरगोधा हवाई हमला, सन 1965 की लड़ाई का, जब दुश्मनों की सेना ने भारतीय वायुसेना के जमीन पर खड़े कुछ विमानों को क्षति पहुंचाई तो पूरी भारतीय वायुसेना में नाराजगी फैल गई। सबसे ज्यादा नाराज थे स्क्वाड्रन लीडर देवैया। उन्होंने हफ्ते भर पूर्व ही आदमपुर में नंबर 1 स्क्वाड्रन का पदभार संभाला था। उन्होंने युद्ध की गंभीरता को समझते हुए खुद विमान उड़ाने की बात रखी, जिसे मान लिया गया। विंग कमांडर ओपी तनेजा के नेतृत्व में ये प्रमुख टुकड़ी पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर भेज दी गई और स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को पंजाब क्षेत्र की रक्षा और जब दुश्मन के इलाके में भारतीय सेना गहराई तक जाकर मुकाबला करेगी तो उस समय उन्हें हवाई सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस तरह भारतीय वायुसेना ने दुश्मन की वायुसेना को नष्ट करने की एक रणनीति भी बनाई, क्योंकि दुश्मनों के सरगोधा हवाई अड्डे में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। हर पल सोच समझ कर उठाना था। स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को मुख्य हमलावर दल के किसी भी विमान के असमर्थ होने की स्थिति में स्टैंड बाय पायलट के रूप में तैनात किया गया था।

फौजी साथियों, भारतीय वायुसेना के कमान मुख्यालय ने 6 सितंबर की देर रात आदेश दिया कि दुश्मन के हवाई ठिकानों पर जवाबी हमला करेंगे। आदमपुर टाइगर्स के कमांडिंग ऑफिसर ओपी तनेजा उस वक्त

वक्त कार्य को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 7 सितंबर की सुबह का समय तय किया था। दुश्मनों के हवाई अड्डे पर हमला बोला जाएगा। पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 1 घंटे में खत्म करने का आदेश दिया गया था। विंग कमांडर ओपी तनेजा की अगुवाई में ये मिशन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शुरू हुआ। बेस पर दुश्मन का हमला जारी था और जब स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को आदेश मिला, वे उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे कि तभी एंटी एयरक्राफ्ट गरी से गोलाबारी शुरू हो गई।

0: फौजी साथियों, इतनी गोलाबारी हो रही थी कि पूरी जगह धमाकों की आवाज गूंज रही थी। इस खतरे के बावजूद मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के जज्बे ने उन्हें तनिक भी कमजोर नहीं बनाया और बड़ी ही कुशलता, असाधारण सटीकता और साहस के साथ उन्होंने अपना विमान आकाश में उड़ा ही दिया। हमला इतना भयानक था कि रनवे की लाइट्स क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऐसी स्थिति में भी विसाहस और निर्भीकता से विमान को बादलों में चीरते हुए ऊंचाई पर ले चल पड़े। ये पायलटों और ग्राउंड क्रू के अपने मिशन को पूरा करने का अटूट संकल्प की एक मिसाल थी। दुश्मन के हवाई अड्डे पर हमले के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया का सामना एक दुर्जेय दुश्मन विमान स्टार फाइटर से हुआ, जिसे दुश्मन सेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट पायलट उड़ा रहे थे। दुश्मन का विमान तेज गति और आधुनिक हथियारों से लैस था। इस स्टार फाइटर विमान ने आकाश में उड़ रहे विमानों पर बमबारी करनी जारी रखी। स्क्वाड्रन लीडर देवैया का विमान उनकी रेंज में आ चुका था, फिर भी वे अपने आप को बचा रहे थे और जवाबी हमले का जवाब भी दे रहे थे। भीषण हवाई लड़ाई जारी थी। वे इतनी कुशलता से विमान उड़ा रहे थे क्योंकि उन्हें अनुभव बहुत था। कई हमलों से खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गोलाबारी से उनका विमान क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने दुश्मन के विमान पर पलटवार हमला किया और उसे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन सेना का विमान अपना नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के गिरते ही उसके पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। इधर स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया का विमान भी तेजी से क्षतिग्रस्त होता हुआ दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर गिर पड़ा। फौजी साथियों, इस हादसे के कारण उनका कुछ पता नहीं चल सका कि क्या वे बचे। उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। बाद में उनके ठिकाने के बारे में कोई और जानकारी ना मिलने पर उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। शौर्य गाथा का बाकी हिस्सा सुनेंगे अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका विशेष जयमाला कार्यक्रम में स्वागत है। फौजी साथियों, कई सालों तक ऐसे वीर योद्धा को उनके वीरतापूर्ण कार्यों की पहचान नहीं मिल सकी। एक ब्रिटिश लेखक के वृतांत के माध्यम से ही भारतीय वायुसेना को उनकी असाधारण वीरता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन्हीं आधार पर सन 1988 में स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

इस तरह से वे मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी बन गए। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से।

फौजी साथियों, स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवया की पत्नी श्रीमती सुंदरी देवया ने युद्ध के लगभग 23 वर्ष बाद अपने पति को दिए गए देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र को स्वीकार किया। इस सम्मान से उनका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। उनके पति की शहादत को सम्मान मिला। ऐसे वीर शहीद की युद्ध कुशलता को युगों युगों तक याद किया जाएगा, जो उनके कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र के लिए उनके उच्च बलिदान का प्रमाण है। फौलादी सीना ताने जो नब में तिरंगा लहराते हैं, ऐसे वीर सपूतों पर ये सारा जहां नाज करता है।

फौजी साथियों, ऐसे पराक्रमी वीर योद्धा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा देवैया को दिल से नमन, प्रणाम और अभिवादन करती हूँ। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुति सहयोग दिया मनीषा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले ने। तो अब दीजिए अनुमति, जय हिंद।

0: 杨美人护着啊，人这不是比较心肝不如的啊，这人可不是可拉红，你说你说的把这个那么好的一个嘛你就跳成来这帮什么难厉害，我们人还可怜可怜不透的呀，啊这啊这玩意啊这玩意什么玩意啊这啊这啊这哎呀啊没这个呀啊这生机还是很低啊，不你这个错了个意啊，कलेजा और किडनी आपस में आ मिले हैं, फेफड़े लापता है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, अरे ओ भाई सांसें महंगाई जैसी चल रही है, दिल की धड़कन ईमान जैसी डूबती जा रही है, ओफ सारा बदन बासी लोना हो गया, अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चढ़ा दिया?
1: अरे बड़े मियाँ ट्रक नहीं, ये मेरी साइकिल है, साइकिल बचाते बचाते भिड़ गई। माफी चाहता हूँ, 8 साल से चला।

0: रहा हूँ मगर आज तक नहीं भिड़ी।
1: अबे ओए अंधा है क्या?
2: अरे हम भी 7 साल से पैदल चल रहे हैं, आज तक नहीं भिड़े। हाय लोगों, अरे सहारा देकर उठाओ भैया। जनाजा ही बचा है।
3: अरे अरे इसे तो पुलिस में देना चाहिए, बड़े मियाँ को कैसा तोड़फोड़ डाला है।
2: ठहरो ठहरो भैया ठहरो, ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैयन लगता है।
0: क्या क्या बकैयन? कौन बकैयन? अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ।
2: अरे नाम बदल लो या चोला, पर हो बकैयन। अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या हम बकैयन को नहीं पहचानते? ए लोगो, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैयन है।
0: बकैयन?
2: अरे साल भर पहले ये मजदूर फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया था। आज हार लगा है।
0: अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों बे बकैयन है तू?
2: अरे लानत है इस पर, बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैयत पर भी नहीं आया।
0: बहुत बुरी बात है। क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क हैं।
4: पीडब्ल्यूडी में?
2: अरे हमसे मत उड़ो बेटा, हमसे मत उड़ो। और माँ इसकी फांसी लगाकर पार हो गई और ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, चिरकूट कहीं का।
0: माय गॉड, मेरी मम्मी को भी मार डाला। अरे मैं तकैयन नहीं हूँ।
2: अबे तकैयन नहीं, बकैयन बकैयन
0: बकैयन।
2: अरे लोगों, इसका छोटा भाई 6 महीने से लापता है।
0: 6 महीने से?
2: न जाने कहाँ कूड़े से पॉलीथीन बीन रहा होगा बेचारा।
0: हद हो गई, मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने। चश्मा क्या गुम हुआ? अच्छा भला आदमी चुकैयन हो गया। दिस इज टू मच, I can't stand it anymore.
2: देखा देखा, अंग्रेजी में हल कर रहा है। अरे हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं बकैयन, तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना हम ही ने सिखाया था।
0: फिर वही नॉनसेंस, मैं बकैयन नहीं हूँ।
1: ज्यादा बको मत, तुम बकैयन हो या नेपोलियन, चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियाँ का चश्मा बनवाओ वरना पुलिस में दे देंगे।
0: हे भगवान, कहाँ फंस गया? कॉलेज की फीस के कुल 35 रुपए जेब में है। खैर देखते हैं। उठो बुड्ढन।
3: दैट्स गुड, संभाल कर ले जाइयो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे।
0: आइए आइए मियाँ, संभाल के, आगे मेन होल है, कहीं घुस गए तो अरेबियन सी में ही बॉडी मिलेगी। जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह।
2: अरे बकैयन, अब बहुत कमजोरी लग रही है बेटा, अब कहीं शरबते अनार या शरबते बादाम वगैरह पिलवा पाटा पान।
0: पहाड़ में गया बकैयन, यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है, कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती।
2: अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े नर्सिंग होम में ले चल।
0: स्विट्जरलैंड न ले चलूं, फूस की टट्टी गुजराती ताला। हाँ वो ऑप्टिशियन का बोर्ड लगा हुआ है, आओ बड़े मियाँ।
2: अबे घसीट कर आ, अबे घसीट कर आ, अबे धीरे, अबे छोड़, अबे ऑफ। बेटा अब बूढ़ा हो गया हूँ, संभाल कर ले चल, हैंडल विथ केयर।
0: अंग्रेजी मत छोको, जल्दी बढ़ो, कॉलेज के 2 पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं।
1: अरे देख के मियाँ।
0: ठहरो, बोर्ड देखने दो, डॉक्टर WW ब्लैकआउट।
2: हाँ WW ब्लैकआउट,
0: ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट। बाप रे, खुद का नाम ब्लैकआउट और है आई स्पेशलिस्ट। बुलाता हूँ
5: डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब।
6: यस, क्या मांगता है?
2: मांगता? अरे मेरे को मांगता है का? आटा ही दे दीजिए।
0: डोंट माइंड हिम प्लीज, आप ही डॉक्टर ब्लैकआउट है?
6: और क्या, तुम्हें हम पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं।
0: सॉरी डॉक्टर, इन बुड्ढन का चश्मा बनवाना है।
6: तो इस काम के वास्ते 6 लोग क्यों आए हैं?
0: 6? हम तो 2 ही हैं।
6: वेट वेट, आई सी 3 टाइम्स विदाउट ग्लासेस, तर्जुमा बिना चश्मे मुझे हर चीज 3 गुनी नजर आती है। मेरा चश्मा कहाँ है? नाउ ओके, आप तो हैं।
0: और डॉक्टर, आपने गले में 3-3 चश्मे क्यों लटका रखे हैं?
6: लिसन, एक चश्मा दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के वास्ते, और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने के वास्ते। नाउ फॉलोड, तर्जुमा अब तुम समझे? अंदर आओ, आओ,
0: आइए।
6: अब कीप द ओल्ड मैन ऑन दैट स्टूल, तर्जुमा बुड्ढे को उस स्टूल पर रख दो, आपका जांच होगा।
0: अरे चाचा स्टूल पर बैठ जाओ। पार्टी में क्यों बैठे जा रहे हो?
2: अरे अरे स्टूल का ढक्कन कहाँ? ढक्कन?
0: अरे ये पार्टी है चाचा, स्टूल इधर है। हाँ इधर, संभल के बैठ जाओ।
6: ओल्ड मैन, इंग्लिश पढ़े हो?
2: इंग्लिश? Ada, I can teach English to your mother's husband. Atarjuma,

0: तुम्हारे अब्बू को अंग्रेजी पढ़ा सकता है, समझा?
1: ओके ओके ओके, वो अंग्रेजी की तख्ती पढ़ो।
0: कौन सी तख्ती?
1: अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है।
0: कौन सी दीवार?
1: ओ माय गॉड, अरे इस कमरे की दीवार।
0: अरे कौन सा कमरा यार?
1: हेल विद यू, कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता। यंग मैन के सीरियस, मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है, मगर लगता है पूरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जंक्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेज चेंज होगा।
2: शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स, फेज। अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत?
1: यू आर राइट, हम पहले बिजली का लाइनमैन था, धंधा नहीं जमा, ऑप्टिशियन का काम पकड़ लिया। डोंट वरी यंग मैन, मुझे आखिरी कोशिश करने दो। सिस्टर,
3: कमिंग माय डार्लिंग डियर लव।
2: आपने सिस्टर बुलाया? वो डार्लिंग डियर लव,
1: दरअसल वो हमारा वाइफ भी है और नर्स भी। डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना।
3: बोलो हानी, हमारे को काय के वास्ते याद किया?
1: सिस्टर, अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा परात लाओ।
3: काय को? इन दोनों बैगर्स को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या?
1: ओह नो, आई टेस्ट, तर्जुमा आंख का जांच। सॉरी सिस्टर, पर आ तो इधर ही है। यू गो।
3: ओके माय डार्लिंग।
1: हाँ जी बोलो ओल्ड मैन, ये गोल गोल चीज क्या है?
0: भाई बड़े डॉक्टर, हमसे लगी मत करो, ये तो चवन्नी है, चवन्नी।
1: व्हाट? परात को चवन्नी बोलता है? ओह नो, माय हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं ये लस्सी पीता हूँ ताकत के वास्ते।
2: ओह नो डॉक्टर, लस्सी की जरूरत मुझे है, मैं पीता हूँ।
1: गिलास इधर लाओ, ये लस्सी नहीं, साबुन का पानी है, लेंस धोने के वास्ते।
2: ओह सॉरी डॉक्टर, मैं समझा लस्सी है।
1: अब भी चैन आया, ये लस्सी ही था बट फॉर प्राइवेट यूज, पब्लिक के लिए नहीं। नाउ यंग मैन, बुढ़े का केस होपलेस है, पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे।
2: क्या?
1: और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि कहां कहां अर्थिंग नहीं है, किधर किधर केबल डैमेज है, समझे?
2: बाप रे, बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा।
0: बेटा बकैयन, अरे चश्मा पड़ने में देर है का बेटा?
1: अरे बैठे रहो, अभी लाइन चेक होगी।
0: अरे मुझे यहाँ से ले चल बकैयन, मुझे यहाँ से ले चल। ये कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूंक डालेगा, और यहाँ से ले चल बेटा।
1: अरे बैठे रहो अड्डे पर।
2: डियर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए?
1: केबल में बेंट या कचरा फंसा है।
2: वेट डॉक्टर, उम्मीद नजर आती है, वो देखो वो पुराना चश्मा, बुढ़ी को ट्राई करो। अरे वो जो कोने में पड़ा है लगा कर देखो।
1: मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुढ़े को लग जाएगा?
2: सिंपल अलजेब्रा, चश्मा पुराना, बुढ़ा पुराना, पुराना पुराना कट, चश्मा बुढ़ा, बुढ़े को चश्मा लग गया।
1: ओके ओके, लो ये चश्मा पहनो। अरे अब थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो, लगाओ।
0: हाय, अय्या अल्लाह, अब मुझे शाम नजर आ रहा है। डॉक्टर, कमरा, दीवार, टक्सी, लिखा है ETDDLSSSO22WQQHH। देखो।
1: अरे बाप रे, ये तो सबसे महीन आखिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल।
0: अरे डॉक्टर, अब मुझे जन्नत तक साफ नजर आ रही है। देखो, अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं, अम्मी दाल बीन रही है, अब फूफा कनकैया लड़ा रहे हैं। मगर ये नौजवान कौन है? ये मरा बकैयन कहाँ भाग गया?
2: जी मैं ही मरा बकैयन हूँ, जिसके बाप भीख मांगते थे, मैंने फांसी लगा ली, छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलिथीन बीन रहा है और कुछ।
0: बेटा माफ करना, अब बिना आग के लालटेन के यही होता है बुढ़ापे में बेटा।
2: डॉक्टर, ये चश्मा है किसका, कहाँ से आया?
1: वेट, हमारा नर्स इधर लाकर फेंका। सिस्टर।
3: यस माय बटर टोस्ट, अभी हम तुमको बताता, हम जब शॉपिंग से लौटता था, रोड में भारी भीड़, ओ माय गॉड, क्या देखा, एक ओल्ड मैन साइकिल से टकरा कर गिर गया, बस इधर ही हमारे को ये फटीचर चश्मा मिल गया, हम लाकर इधर कोना में डाल दिया, सोचा किसी के काम आएगा, हमारे को दाम मिल जाएंगे।
2: ओह, तो ये बड़े मियाँ का ही खोया हुआ चश्मा है, भगवान का शुक्र है कि मिल गया।
0: अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, अब भाई खुदा हाफिज, अब डॉक्टर, अब बाय बाय। हाय लेडी, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।
3: अरे बुढ़ापे में मेरे को गाय को मस्का मारता है ओल्ड चिंपैंजी।
2: अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए।
1: अहीं, ठहरो, तुम किधर को जाता है? My fees, 35 रुपीस ओनली।
2: फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया।
1: कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन फीस जल्दी निकालो
2: वरना

0: वरना आई कीप टू हैंड्स। तर्जुमा, मैं दो हाथ रखता हूँ, गर्दन टेस्ट कर डालूंगा। अंदर घर में मेरा साला फाइन चम भी है, 3 बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दे चुका है। फाइन चम
1: आ रहा हूँ, दस्तारे पहन लूं जरा।
2: नहीं नहीं नहीं, फैंटम जी को क्यों कष्ट देते हैं, ये लीजिए 35 रुपए, मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है।
3: क्या बोला सर, तुम्हारा फीस का रुपया है?
2: हाँ सिस्टर, आज ही जमा करानी है।
3: ओह, कीप द मनी विद यू चाइल्ड एंड गेट गोइंग।
0: तर्जुमा, बच्चे पैसा अपने पास रखो और जाओ, फुट जाओ।

ये थी झलकी लालटेन की वापसी। इसे लिखा केपी सक्सेना ने, निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

श्रोताएं गीत आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से, आवाजें अरिजीत सिंह और शाह त्रिपति की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाजें ए आर रहमान, सुनीता सारथी और तन्वी की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत ए आर रहमान का।
1: जब जब किसी हमलावर ने

0: पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो।

0: अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज जोश ब्रार की थी। गीत के बोल कुमार जगदीप वारिंग और जोश ब्रार के, संगीत सलामत अली मोहतगी और जोश ब्रार का था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू

0: श्री कृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैव टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार

0: शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व

0: कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़ाबल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बनवास से। आवाज विशाल मिश्रा और पलक मुछाल की थी। गीत के बोल सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।

0: चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म रांझना से, आवाजें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मिया, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सईद परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाजें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लोय का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओ नमस्कार। हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं,
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: लगा।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
0: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
1: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं। वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: ये नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनकी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से।

फिल्मी दुनिया की चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

0: काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।
1: ये

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा था।

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज के कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देव आनंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगीला।

बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने

0: ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।
1: लिखे जो खत तुझ

तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

चाहो कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

0: नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।
1: पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं।
0: हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

0: न तन ले के लौटा न मन ले के लौटा।
1: नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अच्छा यह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। समय के स्केल पर हमें नहीं पता कि कब हमारे दिल पर लिख गया था तुम्हारा नाम। समय की शुरुआत से चल रहा है जो सफर, उसे समय के आखिर तक कायम रहना है। हम और तुम समय के थपेड़ों के बावजूद मिलते रहे हैं, हम चलते रहे हैं साथ, और बस साथ ही चलते रहना है हमें। ये सफर जिंदगी का नहीं, समय का सफर है, और हर पल के चेहरे पर तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए।

दुनिया बधावासियों का मेला है। ये धक्के मारती दुनिया, ये कंधे चीलती दुनिया, ये दुनिया जिसमें ख्वाब टूटते हैं, ये दुनिया जिसमें लगती है दिल की खरोंचें। कभी कभी लगता है कि दुनिया की भीड़ से अलग हो कोई ऐसा अलग कोना जहां हम तुम साथ बैठ सकें और अपने दिल का राग छेड़ सकें। ऐसा कोना जहां हम खुद से मुलाकात करें और फिर बस वो लम्हे हमेशा के लिए खिल जाएं दिल की वादियों पर।

आवाजों का कोई मजहब नहीं होता। आवाजें दुनिया की तमाम सरहदों के पार चलती हैं। हम सब महज एक शख्स नहीं, एक किरदार नहीं, आवाजें हैं हम। हम आवाजों की दुनिया के मुसाफिर। हमें कायम रहना है हमेशा एक आवाज की शक्ल बनकर। तुम्हारी आवाज गूंजती रहे कानों में, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे बांसुरी की मीठी तान, जैसे झरने की प्यारी मुस्कान।

तुम्हारी बातें गूंजती हैं हमेशा कानों में, गूंजती है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान का एक सुर है जो इस कमरे में गूंजता रहता है हमेशा। तुम नहीं होती तब भी तुम होती हो अपनी सुरीली बोली बनकर। तुम्हारी आवाज को अपने कानों में सजा लेते हैं हम, और बस उसके बाद हमें दुनिया में किसी चीज

0: छायागीत में आज थे भूपिंदर सिंह के कुछ बेमिसाल नगमे, फिल्मों के नाम, थोड़ी सी बेवफाई,
1: आज बिछड़े हैं,
0: फिल्म मौसम,
1: ढूंढता है फिर वही,
0: फिल्म किनारा,
1: मेरी आवाज पहचान है,
0: और फिल्म दूरियां,
1: सामने दीवार थी गुजरियों की।
0: आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: अहले दिल
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतियों, ब्रेक तो बाद लेके आए हैं कलेर कंठ का गाया गीत, फिल्म है यार अनमोल।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
1: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.ORG.IN पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

इस गीत दे नाल ही पंजाबी गीतां दा अज दा प्रोग्राम सुरसांझ हुण इत्थे ही समाप्त हुंदा है। ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले रात दे 11 वजन वाले ने ते हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों हिंदी च समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः

0: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।